मीडियम वेव 254.45 मीटर यानी 1179 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। आज शनिवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 9वीं तिथि यानी 30 मई सन 2026। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। स्वीकारें हमारा नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का रीवा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का

0: निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब प्रस्तुत है जयंती हिरेमठ के स्वर में एकनाथ का भक्ति गीत।

0: इस भजन के साथ ही प्रातःकालीन भक्ति संगीत का कार्यक्रम सुप्रभातम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कृषि संकेत। लीजिए सुनिए सतावर उगाए लाभ कमाए के संबंध में जानकारी।
1: किसान भैलो मनई मेर मेर के फसल के खेती करत है। आज काल औषधि फसल के खेती करके अधिक से अधिक लाभ कमावा जा सकत है। आज हम अपना पाचन का सतावर के खेती कैसन किन जाती और कौन कौन लाभ होते हैं एक है बाबा जन वही देव। सतावर एक महत्वपूर्ण औषधि फसल है। सतावर का मेर मेर के नाम से जाना जाता है। जैसन सतावरी सतमूल बहुसुता भातवीर्य अधिकांशतः यह मेर हमारे देश के विभिन्न भागन में प्राकृतिक रूप से पाई और एकर पत्ती बहुत पातर सुई के नई नुकीली होती। इनखर शाखा बहुत कठोर होती तथा मूल से इनखर कईक शाखा एक साथ निकलती हैं, जो उन लता के नई बढ़ती हैं। इनखर छोट छोट कांटा होते। मध्य भारत के जलवायु सतावर के खेती के खातिर अच्छी होती। सतावर के जड़ 6 से 20 इंच गहरी तक जमीन में जाती है। यह दृष्टि से बलुई दोमट या रेतीली दोमट माँ इनकर खेती आसानी से कीन जा सकती। जमीन में जल के निकासी के प्रबंध उचित होने का चाहिए। पौधशाला बनाने के विधि एवं बुवाई साधारणतः सतावर के पौध बीजन के द्वारा तैयार किए जाते। इनके खातिर पौधशाला डारब उत्तम होती। लगभग 100 वर्ग मीटर के पौधशाला द्वारा एक एकड़ खेत के खातिर आवश्यक पौधा तैयार किए जा सकत है। बीजन के बुवाई लगभग 15 से 30 मई के करीब करने के चाहिए और 1 से 15 किलोग्राम बीज द्वारा एक एकड़ खेत के खातिर पौधा तैयार किए जा सकत है। बुवाई के बाद गोबर मिश्रित मिट्टी के पतली परत के द्वारा इन्हें ढक दे के चाहिए तथा हल्की सिंचाई कर दे के चाहिए। लगभग 10 से 15 दिन बाद अंकुरण शुरू हो जाते हैं और बुवाई के 2 से 3 महीना के बाद ये पौधा 6 से 9 इंच लंबाई वाले रोपाई योग्य हो जाते। बीजन का पॉलीथीन में उगावा जा सकता है। बीजन के अलावा पुराने पौधन के खुदाई करत समय भूमिगत कंदन के छोटे अंकुरण प्राप्त होते जैसे नया पौधा तैयार किए जा सकता है। खेती के तैयारी एवं रूप सतावरी के जड़न के उचित विकास के खातिर मई जून में खेत के गहरी जुताई के बाद केचुआ खाद और 4 टन कंपोस्ट प्रति एकड़

0: कड़ मिला देंगे चाहिए। साथ है साथ 65 से 70 सेंटीमीटर दूरी पर लगभग 9 से 10 इंच ऊंची मेड़ बना के लगभग 4 इंच गहराई पर इनका पौधा रोपण करे के चाहिए। सिंचाई और देखभाल, यह फसल के अधिक सिंचाई के जरूरत नहीं हो। यदि महीना में एक सिंचाई उपलब्ध हो गए तो इनके जड़ के विकास निकाह हो। यह एक जड़ी फसल है, ऐसे यह ध्यान रखना जरूरी है कि पानी पौधन के जड़न में अधिक देर तक न रुके। कम पानी के स्थिति में इनकर खेती असिंचित फसल के रूप में किन जाए सका थी। जब पौधन में लगे बीज परिपक्व हो जाए तो वह समय हल्की सिंचाई खेत में कर दे के चाहिए। बाद में सावधानी पूर्वक जड़ के खुदाई कर ले के चाहिए। मार्च से मई के समय खुदाई के खातिर उपयुक्त होता है। सतावर के जड़ों के ऊपर एक जहरीला छिलका या आवरण पावा जाता है, अतः जड़ निकालने के तुरंत बाद छिलका उतार दे का चाहिए। नहीं तो जड़ सूखे के बाद छिलका निकालना बहुत कठिन होता है। सामान्यतः एक एकड़ फसल से लगभग 3000 किलोग्राम गीली जड़ प्राप्त होती। एक है बाद जड़न का सुखावा जाता है। सूखे के बाद फसल से 30 क्विंटल सूखी जड़ प्राप्त होती। औषधि महत्व, प्राचीन काल से सतावर चिकित्सा में प्रमुख स्थान रखते हैं। सतावर एक बहुत उपयोगी पौधा है। इनका दूधवर के रूप में उपयोग सबसे अधिक है। यहीं के साथ है चर्म रोग के खातिर, मेर मेर के शारीरिक दर्द के निदान के खातिर उपयोग किए जाते हैं। पीलिया, टाइफाइड और मलेरिया जैसन बुखार के खातिर एक प्रयोग किए जाते हैं। गाय के दूध में उबाल के यही पिए से ग्लूकोरिया जैसन समस्या से निपटा जा सका था। यहीं से सतावर एक उपयोगी पौधा माना जाता है। एक है उपयोगिता का देखत की इनका कृषिकरण करब जरूरी है। सतावर के फूल गुच्छा के रूप में आवत है। फूलन के समय सितंबर अक्टूबर होते हैं। फिर फूल में फल लागत है हरे रंग के, जौन पके के बाद लाल रंग के हो जाते हैं। इन्हीं फल से प्राप्त बीजन से बुवाई की जाती।
1: सतावर उगाए लाभ कमाए, इस विषय पर अभी किसान भाई सुन रहे थे जानकारी। कृषि संकेत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं रामचरित मानस से पाठ।

और जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं। मालियों से अनुमति लेकर दोनों भाई पुष्प एकत्रित करने लगे। उसी समय पार्वती की पूजा करने के लिए सीता जी भी वहां आईं। उनके साथ सुंदरी और सयानी सखियां थीं। सीता जी ने बड़ी श्रद्धा से मां पार्वती गिरिजा की पूजा की और योग्य तथा सुंदर वर की कामना की। इसी बीच एक सखी को राम लक्ष्मण पुष्प एकत्रित करते दिखे। दर्शन मात्र से उस सखी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भराया। अन्य सभी सखियों ने उस सखी से उसकी प्रसन्नता का कारण पूछा। दोनों भाइयों के अमित सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो बोली, वाणी बिना नेत्रों की है और नेत्रों के वाणी नहीं है, अतः मैं उन दोनों राजकुमारों के सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। ये सुनकर दूसरी सखी बोली कि संभवतः ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। इन दोनों राजकुमारों ने अपने रूप की मोहिनी फैलाकर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। सीता जी को ये वर्णन अत्यंत प्रिय लगा और वे उन राजकुमारों के दर्शन के लिए अपनी सखी को साथ ले आगे चलीं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, गायक स्वर अनुराधा पोडवाल का था। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम आज सवेरे रिले करेंगे सुबह 7:30 पर, सॉफ्टवेयर कार्यक्रम सुबह 8:30 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी में आज शाम 5 सुन सकते हैं रेडियो चैरी और कार्यक्रम हमारी विरासत। महिला सभा का समय होगा दिन में 1, इसमें किचन और ब्यूटी टिप्स के अलावा सुन सकते हैं विशेष महिला व्यक्तित्व के अंतर्गत डॉक्टर गरिमा तिवारी से बातचीत। सुगम संगीत का आनंद लीजिए दिन में 1:45 पर, कलाकार होंगी संध्या पाठक। दोपहर 1:30 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए लल्लू राम शुक्ला के गाय लोकगीत। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान है जिन्हें आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले किया जाएगा। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल, इसमें सुन सकते हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम रंभस। सुगम संगीत का कार्यक्रम सुबह 10:05 पर, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में संगीत प्रभा सुबह 7:20 पर। इसके अलावा कुछ और फिल्मी गीतों का आनंद लीजिए सुबह 9:00।

श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि शाम 7:21 पर कार्यक्रम में चौपाल में आज आप सुन सकते हैं लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम रंभस। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है।

0: तो प्रमुख जिम्मेदारी ही है। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः अद्य प्रातः पञ्चदिवसीय भारत यात्रायां बिहारस्य गयानगरं सम्प्राप्स्यति। तेन सह नैके मंत्रिमंडलस्य मंत्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः व्यापारनेतारः उच्चस्तरीय प्रतिनिधिदलं च भविष्यति। राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यस्य एषा प्रथमा भारत यात्रा भविष्यति। अद्य अपराह्ने राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग इत्येषः नवदिल्ल्यां प्राप्स्यति। सः सायंकाले विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह मेलनं करिष्यति। श्वः म्यांमार देशस्य राष्ट्रपतिः म्यांमार भारत व्यापार मञ्चे भागं ग्रहीष्यति इत्यपेक्षास्ति। सोमवासरे राष्ट्रपतिः यू मिन आंग लाइंग वर्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकं सम्बन्धं सुदृढं कर्तुं चर्चां करिष्यति। सर्वकारः अवदत् यत् देशे पेट्रोल डीजल एलपीजी इत्येतेषां पर्याप्तः भण्डारः अस्ति। सर्वे शोधनागाराणि इष्टतमस्तरे एव प्रचलन्ति। नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय मन्त्रिमण्डलस्य विवरणं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् प्राकृतिक गैस इत्यस्य उत्पादनं सर्वकालिकोच्चतमस्तरे अस्ति यत् प्रतिदिनं एलपीजी इत्यस्य 290,000 टन परिमितम् अस्ति। श्रीमती शर्मा सूचितवती यत् कस्यामपि एलपीजी वितरण संस्थायां शुष्कतायाः सूचना न प्राप्ता। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणा धर्मेन्द्र प्रधानेन समग्र शिक्षाभियानस्य अन्तर्गतं निधिप्रसारणस्य तस्य उपयोगस्य च विषये विस्तृत समीक्षा सभायाः अध्यक्षता कृता। यस्याः लक्ष्यं समग्र शिक्षा 3.0 अधिकं दक्षं पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं 74,000 क्विंटल परिमितस्य राष्ट्रिय बीज संरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषि विषयकस्य राष्ट्रिय सम्मेलनस्य द्वितीय दिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयनासीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट क्रीडाङ्गणे न्यू चण्डीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 7 स्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
0: बीएसएफ के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट

0: किस तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।

कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।

श्रोताओ, सुरमई सवेरा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से, और आज आपके साथ हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो संगिनी प्रियंका। आज जब रुक कर सोचने की ही बात निकली है, तो क्यों ना सोच के साथ कुछ सीख ही लिया जाए। किसी भी विषय पर जब उसके चौतरफा पहलुओं पर विचार किया जाता है, तो हमारी सोच परिपक्व बनती है और उसके आधार पर लिया गया निर्णय हमें बेहतर परिणाम देता है। और इसी परिपक्व सोच के साथ मिले बेहतर परिणाम हमें जीवन में सफलता की राह पर ले जाते हैं। ये परिणाम जीवन में सफलता के रंग भरते हैं। ये परिणाम ही हमें सिखाते हैं, या ये कहा जा सकता है कि ये परिणाम ही हमें सोचना और सीखना समझाते हैं।

दोस्तों, जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत या प्रतिभा की ही ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि हमारी सोच की भूमिका भी अहम होती है। बेहतर सोच ही मेहनत और प्रतिभा को सफलता के रंगों में रंगती है। लेकिन जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में हमने बात की कि किस तरह से वक्त की रफ्तार के साथ दुनिया जहां में भी बदलाव आ रहे हैं, तो आप समझ ही चुके होंगे कि हमारा इशारा किस तरफ है। आज हम अपनी सोच से कम और कृत्रिम सोच के दृष्टिकोण को ज़्यादा अपना रहे हैं। आज हर सवाल के जवाब के लिए कृत्रिम बुद्धि का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन दिमागी कसरत के रूप में सोच का क्या? अगर वो भी मशीन ही करेगी तो हमारा विकास कैसे होगा? इस पर गहन सोच विचार की आवश्यकता आन पड़ी है। जैसे जैसे AI, मेटा और गूगल का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे मानवीय सोच और मशीनी सोच का तुलनात्मक अध्ययन भी बढ़ता जा रहा है। आज हम सभी गूगल, मेटा और AI के अधीन हुए जा रहे हैं। आप भी इस पर सोचिएगा जरूर, और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए संगीत को माध्यम बनाने से बेहतर और क्या हो सकता है।

दोस्तों, तकनीकी संसाधनों की रचना भी मानव ने ही की है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि इसके उपयोग में आने से हमारे काम आसान और जल्दी तो हो रहे हैं, लेकिन हमारी तरह सोचने का काम तकनीक शायद नहीं कर सकती, क्योंकि हर व्यक्ति का दिमाग और मन किसी एक ही विषय वस्तु पर अलग अलग तरह से सोचता है और उसके परिणाम भी अलग अलग ही सामने आते हैं। लेकिन क्या आपकी समस्याओं के सटीक समाधान या प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तकनीकी संसाधनों के पास कोई अनुभव है? ये प्रश्न अवश्य हमारे जहन में आता है, क्योंकि आप अपनी समस्याएं जब चार लोगों से डिस्कस करते हैं तो आपको चार अलग अलग अनुभव और नज़रिया मिलता है, जबकि तकनीकी संसाधन पर पूछी जाने वाली समस्या या प्रश्न ना तो वहाँ से हमें समाधान मिलता है, ना ही हमें कोई अनुभव वहाँ से मिलता है, वहाँ सिर्फ सुझाव मिलते हैं। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? इसका जवाब खुद से पूछिए और बातचीत आपसे करेंगे इस गीत को सुनवाने के बाद।

0: श्रोताओं बने रहिए कार्यक्रम में हमारे साथ, हाजिर होंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।

0: काट दिया।
1: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अंतराल के बाद एक बार पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम सुरमई सवेरा में, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो सिंगनी प्रियंका, और हम बात कर रहे हैं सोच और उसके माध्यम से सीखने पर। और हमारा वार्तालाप केंद्रित है हमारे आसपास के जो वातावरण है उसमें हम किस तरह से सोचते हैं और किसी बात को किस तरह से समझते हैं। दोस्तों, तकनीकी युग में संवेदनाओं और अनुभवों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि तकनीक के पास अभी भी भावनाओं का अभाव है। इसलिए ये आपको प्रत्युत्तर में वही देगा जो आप चाहेंगे, वह नहीं जो आपके लिए अच्छा होगा। हमारे लिए जो भी अच्छा या बुरा है उसे हम अपनी सोच और समझ से वास्तविक रूप में हासिल कर सकते हैं। क्या कहा जा सकता है कि जब हम तकनीक उपयोग करते हैं या उसे सामने कोई तर्क देते हैं तो वह अक्सर हमारी बातों से सहमत हो जाता है। कई शोधों में पाया गया है कि लोग उन उत्तरों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं जो उन्हें सही महसूस करवाते हैं, भले ही वे पूरी तरह से सही ना हो। और धीरे धीरे हम अपने विचारों को चुनौती देने के बजाय केवल उसकी पुष्टि खोजने लगते हैं। जब हर उत्तर हमें केवल संतुष्ट करने लगे तब हमारी निर्णय क्षमता वहीं कमजोर होती है। आमतौर पर भी हमने देखा है कि यदि हम कोई बात किसी से पूछते हैं तो जब वो व्यक्ति हमारे पक्ष में बात करता है तो हमें अच्छा लगता है, हमें सही लगता है और ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति सही है। लेकिन जब कभी कोई आपकी किसी बात का विरोध करता है तो हम उसे नगण्य मान लेते हैं या हम उसे इग्नोर कर देते हैं। श्रोताओ, तकनीक आपके जज्बातों का जवाब जज्बातों से नहीं दे सकता, इसके लिए बोलचाल में संवाद होना ज़रूरी है। जो तकनीक आपको संवाद दे लेकिन साथ में वो आवाज़ या ध्वनि नहीं देगा जिससे ये समझ सके या जान सके कि आपकी भावनाओं को वो कितना करीब से समझ रहा है।

म्यांमार के राष्ट्रपति यूमिन आंग वाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज बिहार के गया पहुंचेंगे। यहां वे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। गुजरात के भुज में कल भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई चौकियों का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन में कहा कि इस बार खरीफ सीजन के लिए जरूरत से 11% ज्यादा बीज उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि तिरुवनंतपुरम के सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश की पहली एआई चिप नेत्रा A2000 तैयार कर ली है। ये चिप 12 उन्नत नैनोमीटर तकनीक पर आधारित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल माता वैष्णो देवी धाम के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार का एक दल यहां की व्यवस्थाओं का अध्ययन करने आया है। उर्दू के मशहूर शायर और पद्मश्री डॉ. बशीर बद्र को कल भोपाल में श्रद्धांजलि दी गई। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में हुई शोक सभा में बड़ी तादाद में शायर, साहित्यकार और नागरिक जमा हुए। प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। कल ग्वालियर समेत कई जिलों में बारिश हुई और तापमान एक झटके में 10 डिग्री तक गिर गया। और आईपीएल क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में कल गुजरात टाइटन्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। लवर्स, लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत निर्देशन है राहुल देव बर्वन का और आवाज अमित कुमार की है।

इस समय आप सुन रहे हैं राहुल देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है हीरा पन्ना और गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

रास्ते प्यार के। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, गायक स्वर लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम का है। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पेश है ये गीत।

अभी चूंकि आपने सुना, उसे गाया था लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम ने। फिल्म का नाम था हम आपके हैं कौन। गीत लिखा था देव कोहली ने और संगीत राम लक्ष्मण का था। लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म राजपूत से। गायक कलाकार हैं किशोर कुमार, संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने और शब्द आनंद बख्शी के हैं।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने जो गीत सुना उसे आवाज़ दी थी लता मंगेशकर और हरिहरन ने। फिल्म का नाम था लम्हे। लीजिए अब सुनिए चांदनी फिल्म का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर और बाबला मेहता की है, संगीत निर्देशन शिवहरी का और गीत आनंद बख्शी का।

राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में लीजिए सुनिए रविंद्र रावल का लिखा गीत। शैलेंद्र सिंह के गाए इस गीत को हमने लिया है फिल्म तराना से।

आशा भोसले और मनहर उदास के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म होटल का गीत। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म दिल है कि मानता नहीं से, आवाज़ अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। 10 बजने को है अगला प्रसारण। आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए जिले की चिट्ठी। आज इसमें आप सुनेंगे हरदा जिले की चिट्ठी। आलेख लोकेश गौर का है, वाचन स्वर्दीपा सिंह का।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। ये वो चिट्ठी है जिसमें दर्ज होते हैं जिले की धड़कनों के सुर, विकास की आहट, जनजीवन की हलचल और बदलते समय की तस्वीर। आज हम लेकर आए हैं हरदा जिले की चिट्ठी, जिसे भेजा है हमारे संवाददाता लोमेश कुमार कौर ने। पिछले एक महीने में जिले में क्या कुछ खास हुआ, किन उपलब्धियों ने सुर्खियां बटोरी, किन अभियानों ने लोगों का ध्यान खींचा और प्रशासन से लेकर आम जनता किन मुद्दों पर सक्रियता दिखाई गई, इन सब का लेखा जोखा हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही जानेंगे आने वाले दिनों में जिले के लिए क्या महत्वपूर्ण होने वाला है, कौन सी योजनाएं आकार लेंगी, किन कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं और क्या हैं वो खबरें जो हरदा के भविष्य की दिशा तय कर सकती हैं। तो आइए खोलते हैं हरदा जिले की चिट्ठी और पढ़ते हैं बीते दिनों की कहानी, आने वाले कल के जुबानी। बात सबसे पहले मौसम की। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों से इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल रखने की अपील की है। नौतपा के चलते जिले में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कल जिले में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सुबह कुछ राहत जरूर मिली लेकिन दोपहर बाद गर्म हवाओं और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। हालात ऐसे रहे कि शाम तक सड़कें लगभग सूनी नजर आईं। वहीं हरदा जिले में जनगणना 2026-27 के पहले चरण का काम आज पूरा हो रहा है। 1 मई से शुरू हुए इस अभियान के तहत मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों को पहले ही विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रगणक घर घर पहुंचकर भवनों का विवरण दर्ज कर रहे हैं, आवास संबंधी जानकारी जुटा रहे हैं। जिले में ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व पूरे उल्लास, श्रद्धा और भाईचारे के माहौल में मनाया गया। शहर से लेकर गांव तक मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, तरक्की और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और सौहार्द का संदेश दिया। भीषण गर्मी और बढ़ती पेयजल समस्याओं को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ग्रामीण नागरिक हैंडपंप या नल जल योजना बंद होने की शिकायत 07577223212 पर दर्ज करा सकते हैं। इसी कड़ी में हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने विधायक निधि से विधानसभा क्षेत्र के 24 गांवों को फायर फाइटर पानी टैंकर उपलब्ध कराए हैं। इसका उद्देश्य गर्मी के दौरान पेयजल संकट से राहत पहुंचाना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जिले में जागरूकता गतिविधियां जारी है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किशोरियों को माहवारी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, महाविद्यालयों में पोस्टर मेकिंग, रैली और संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। किशोरियां चुप्पी तोड़ो, खुलकर बात करो का संदेश देकर सामाजिक

संकोच दूर करने का प्रयास कर रही हैं। वहीं डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में ई ऑफिस प्रणाली का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में कर्मचारियों को दैनिक कार्यों में ई ऑफिस का बेहतर और प्रभावी उपयोग सिखाया गया। अब एक महत्वपूर्ण न्यायिक खबर। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 21, 22 और 23 अगस्त को विशेष लोक अदालत आयोजित करने का निर्णय लिया है। वैवाहिक संपत्ति, मोटर दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और श्रम संबंधी मामलों की सुनवाई राज्य, जिला और मध्यस्थता केंद्रों पर की जाएगी। जिले में कुपोषण दूर करने और स्कूलों में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पोषण प्रहरी अभियान और विद्या आसन अभियान को समाज का व्यापक सहयोग मिलने लगा है। विभिन्न सामाजिक संगठनों और समाजसेवियों ने इन अभियानों में सक्रिय भागीदारी का भरोसा दिलाया है। किसानों के लिए भी एक अहम खबर है। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन किया जाएगा। किसानों का पंजीयन 15 जून तक जारी रहेगा। वहीं खरीदी केंद्रों पर उपज बेचने से पहले किसानों के लिए फेस ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया गया है ताकि योजनाओं का लाभ सही किसानों तक पहुंच सके। दूसरी तरफ पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखते हुए हरदा पुलिस ने कंट्रोल रूम में विशेष शिविर का आयोजन किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, संतुलित आहार, पारिवारिक सामंजस्य और नशा मुक्ति जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने जानकारी दी। और अब एक और सुखद खबर। मुख्यमंत्री दूरदर्शन योजना के तहत हरदा जिले के 196 वरिष्ठ नागरिक आगामी 3 जुलाई को माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना होंगे। यात्रा राज्य सरकार के खर्च पर कराई जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ नागरिक 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हरदा जिले की चिट्ठी में आज बस इतना ही। कल सुबह ठीक 10 बजे हम लेकर आएंगे पड़ोसी नर्मदापुरम जिले की चिट्ठी। हरदा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

मीडियम वेव 254.45 मीटर अर्थात 1179 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आरंभ करते हैं भजन से। लीजिए सुनिए अनूप जलोटा का गाया ये भजन।

इस गज़ल के बाद लीजिए सुनिए कव्वाली, गायक स्वर जफर हुसैन खान बदायूनी और साथियों का है।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास के गाए इस गीत के साथ ही हमारा सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रीवा केंद्र है, 11 बजने को है। अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।

0: हमारा नाम गिरधारी सेन है।
1: गिरधारी
0: सेन
1: कहाँ से, कहाँ से बोल रहे हैं गिरधारी जी?
0: दमोह से बोल रहे हैं मैडम।
1: दमोह से, अच्छा जी। तो फैमिली में कौन कौन है?
0: फैमिली में बच्चे हैं हमारे दोनों।
1: अच्छा, और कितने बड़े बड़े हैं आपके बच्चे?
0: अभी 12th पास हुआ है लड़का।
1: हाँ,
0: तो कॉलेज में जा रहा है। बच्ची अभी 10th पास हुई तो 11th क्लास में जा रही है।
1: अच्छा, चलिए। तो कहीं घूमने का प्लान बनाया है कि नहीं आपने?
0: घूम आए मैडम।
1: अच्छा, घूमा है? कहाँ पर घूम कर आए?
0: 2-3 जगह हुआ है, उज्जैन हो गया है।
1: हाँ
0: हाँ, और यहाँ पे अभी मैहर से लौटी है।
1: चलिए, बढ़िया। तो हम यही बात करना चाह रहे हैं कि जो अपन पर्यटन के लिए जाते हैं
0: जी,
1: पर्यटन के लिए जाते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है?
0: अब उसमें क्या है कि मैडम जी, अब गर्मियों की छुट्टी भी चल रही है, बच्चों का एंजॉय हो जाता है।
1: हाँ,
0: और का, और घूमने फिरने में थोड़ी क्या है कि अपने यहाँ से हट के दूसरे जगह वहाँ का माहौल भी अपना वो आ जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि है ना, हम लोगों का जो मन है वो भी इतने सुंदर दृश्य देख के थोड़ा सा, जो कहते हैं ना, रिचार्ज हो जाता है
0: जी,
1: है ना, परिवेश बदलने से, माहौल बदलने से, सुंदर सुंदर नज़ारे देखकर। बस इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो गिरिधर जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने कॉल किया, और एक हफ्ते बाद दोबारा कॉल कीजिएगा और कल अपना प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। ठीक है, नमस्ते।
0: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हेलो,
1: हाँ जी
0: नमस्कार।
1: नमस्ते। हाँ जी नमस्ते।
0: हेलो, नमस्कार।
1: हाँ जी कौन बोल रहे हैं
0: बुरहानपुर से सलीम,
1: जी?
0: बुरहानपुर से सलीम बोल रहा
1: बुरहानपुर से सलीम
0: हूँ।
1: जी। सलीम जी क्या हाल है?
0: अच्छे हाल है आपके? बोलो मैडम, बहुत
1: हम
0: दिनों से सुन रहे थे तो मैंने कहा आज लगा के देखो
1: अच्छा।
0: आपका कार्यक्रम। बहुत
1: हाँ तो ये बताइए सलीम जी, फैमिली में कौन कौन है आपके?
0: हमारी फैमिली में दो भाई है,
1: हाँ
0: सात भतीजी है, भतीजा है।
1: अच्छा। तो कहीं घूमने उमने जाते हैं कि नहीं जाते आप?
0: जाते मैडम, मैं तो नाबीना हूँ मैडम, मेरे को दोनों आंखों से नहीं दिखता।
1: अच्छा लेकिन है ना महसूस तो कर सकते हैं आप,
0: हाँ मैडम,
1: है ना? तो बस यही जानना था कि जो हमारे पर्यटन हैं उनके बदलते आयाम क्या हैं, हम लोग क्यों घूमना पसंद करते हैं कहीं भी अपने घर से बाहर जाकर, थोड़ा सा बाहर की वादियों।
0: इसलिए घूमना पसंद करते हैं कि वहाँ वातावरण साफ होना चाहिए, सुंदर
1: हाँ
0: होना चाहिए।
1: हाँ
0: हाँ, गंदगी साफ होना चाहिए बिल्कुल, माहौल अच्छा होना चाहिए,
1: बिल्कुल। और
0: भाईचारा का।
1: आज जो पहले हम लोग घूमते थे और आज के घूमने में कुछ तो फर्क आया है ना? अब ज्यादा आसान हो गया है या कठिन है? आप क्या कहना
0: नहीं
1: चाहते हैं?
0: मैडम, आसान तो हो गया, पर क्या है कि अभी भी जैसे कुछ परेशानी जाने में लगती है
1: जाने में बल्कि अब आसान हो गया, सबके पास स्मार्टफोन
0: ना।
1: है।
0: अपन जैसे बाहर जाओ, बाहर
1: हाँ
0: ट्रेन में तो ट्रेनों में इतनी गर्दी रहती कि मैं बता नहीं सकता।
1: हाँ लेकिन पहले
0: उसमें
1: की तुलना में अब
0: पड़ता
1: अपन
0: ना, वहाँ पहले से आसान हो गया
1: पहले से काफी
0: जाने।
1: आसान हो गया है। हमारी बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से हमें बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही उपलब्ध हो जाती हैं। हम अपने होटल्स की बुकिंग कर लेते हैं, ट्रेन की
0: ये
1: बुकिंग
0: बात तो सही
1: एडवांस में
0: बात
1: कर लेते हैं, और गूगल मैप के जरिए हम अपना रास्ता भी चुन लेते हैं आसान तरीके से, है ना?
0: हाँ मैडम।
1: जी। चलिए समीर सलीम जी
0: हेलो
1: आपका। हाँ
0: मैडम,
1: जी
0: आपका नाम क्या है?
1: कविता रावत।
0: सविदास।
1: चलिए
0: चलो
1: सलीम
0: ठीक
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया।
0: है, आपका भी धन्यवाद। बहुत पहली बार लगाया मैडम, बहुत दिनों से सुन रहा था रेडियो, सुनता
1: चलिए
0: रहता हूँ, तो मैंने कहा
1: बिल्कुल,
0: आप
1: आपका
0: बताए
1: हमेशा
0: थोड़ा।
1: लगेगा, आप ट्राई किया करिए। और धन्यवाद कॉल करने के लिए।
0: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते दीदी।
0: बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम
1: आरती भारद्वाज।
0: आरती भारद्वाज।
1: हाँ,
0: आरती जी आपने कॉल 1 हफ्ते बाद ही किया होगा ऐसी उम्मीद करती हूँ।
1: नहीं, बहुत दिन में, करीबन 3-4 महीने हो गए,
0: चलिए कोई
1: मतलब
0: बात नहीं। एक्चुअली 1 हफ्ते के अंदर हम दोबारा कॉल नहीं ले पाते हैं अपने लिसनर्स का, इसलिए
1: मैंने
0: कोई बात।
1: फरवरी में लगाई थी।
0: अच्छा, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: हेलो,
0: कहाँ से बात कर रही हैं?
1: बुरहानपुर से। हाँ,
0: अच्छा, बुरहानपुर से हैं आप भी।
1: बुरहानपुर।
0: अभी हमारे जो श्रोता का कॉल आया था सलीम जी का, और वो भी बुरहानपुर से थे, तो बुरहानपुर की लाइन आज काफी क्लियर है ना फोन कॉल
1: मैंने
0: से
1: दो
0: जी।
1: बार लगाई थी, 2 बार पहले लगाई लगा चुकी हूँ,
0: अच्छा।
1: और दो
0: आरती
1: दिनों
0: जी
1: से
0: क्या
1: फोन नहीं
0: करती
1: उठा
0: हैं
1: रही।
0: आप?
1: कुछ नहीं, घर का काम, वो खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत आ जाते हैं, बाड़ी वगैरह लगाते हैं
0: अच्छा। फैमिली
1: उसी
0: में
1: में
0: कौन
1: चले
0: कौन
1: जाते
0: है?
1: हैं।
0: और
1: क्या
0: आपके परिवार में कौन कौन सदस्य हैं?

0: ससुर देवर देवानी ननद सब है,
1: अच्छा।
0: बहुत दो लड़कियां हैं।
1: तो आरती जी कहीं घूमने जाती हैं आप पर्यटन के
0: हाँ
1: लिए?
0: अभी आए घूम के, तो अभी घर पे मायके।
1: अच्छा। तो
0: अरे भोपाल से जरा साइड में पड़ता, नर्मदापुरम जिले में शिवनी
1: हाँ
0: बनापुरम।
1: हाँ अच्छा। तो कैसा लगता है आपको, मतलब इसके अलावा भी आपने कहीं जो सुंदर सुंदर वादियां हैं, अच्छे अच्छे दृश्य वाली जगह जो होती हैं घूमने के हिसाब से, वहां भी घूमे हो?
0: हाँ, बहुत घूमने की जगह हमारे यहीं पे बुरहानपुर में।
1: ये बात सही है। कैसा लगता है आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत अच्छा घूमने लायक बहुत जगह है। आशीर्वाद का किला है, हम मतलब यहाँ रहते हैं, वहाँ 12 मंदिर है, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग बनी है नागझिरी घाटे,
1: हाँ।
0: तो वहाँ भी रोज शाम को जाते घूमने।
1: ऐसा
0: आपके
1: लगता
0: वहाँ
1: है
0: पे?
1: आपको कि है ना, घूमने से मतलब पर्यटन से हमें कई लाभ होते हैं, हमारी दिनचर्या में बदलाव आता है, मन को खुश खुशी मिलती है, ऐसा होता है या नहीं?
0: हाँ,
1: होता है
0: घूमने
1: ना
0: से बहुत अच्छा
1: ऐसा?
0: लगता
1: जी। चलिए आरती जी,
0: है।
1: बहुत बहुत
0: मैं हमारे
1: धन्यवाद।
0: पतिदेव जी बात करना चाह रहे थे।
1: हाँ जी बिल्कुल, करवाइए।
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
2: बोलिए। जो
1: आप बोलिए, हम तो सुन रहे हैं आज।
2: टॉपिक पे बोले वही तो आप बोलोगे तो बोलेंगे।
1: आप ये बताइए कि पर्यटन के कुछ लाभ हमको मिलते हैं या नहीं मिलते? हम घूमने जाते हैं तो हमारा मूड थोड़ा रिफ्रेश होता है या नहीं होता है?
2: बिल्कुल
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा
2: ठीक है, धन्यवाद।
1: जी।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्कार।
1: जी, नमस्कार।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ,
0: पूरा नाम?
1: राकेश कुमार बात कर रहा हूँ, शिमला हिमाचल प्रदेश।
0: अच्छा, पहले भी आपसे बात हो चुकी है?
1: नहीं, मैं तो दो दो हफ्ते के बाद कॉल गया आपके पास।
0: अच्छा,
1: जी
0: नहीं,
1: जी
0: इसके पहले कभी बात हुई होगी। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आवाज़ सुन के कि आपसे मैं बात कर चुकी हूँ।
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप कर चुकी है, क्योंकि जैसे कि आपका जो नियम होता है 10 दिन का, तो मैं 2 हफ्ते के बाद कॉल लगाया, तो
0: बहुत
1: इसलिए कॉल
0: अच्छी
1: लगाया।
0: बात, बहुत अच्छी बात। राकेश जी,
1: जी
0: आज का जो हमारा विषय है वो है पर्यटन के बदलते आयाम।
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: उस
1: जी
0: बारे में हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जो पर्यटक जो है बदलते जो राय, तो जैसे कि इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आजकल जो पर्यटक जो आते हैं हम कहीं भी, उनकी बदलती राय ये होनी चाहिए कि जैसे आप कहीं भी घूमने जाए, अगर मानो कि अगर आप शिमला आते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है पर्यटक स्थल है, वो तो आप सभी जानते हैं, तो अगर आप पर्यटक अगर आप घूमने आए, तो आपको विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जैसे कि मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार को एक नियम बनाना चाहिए इसके ऊपर, कि जो जो पर्यटक आए, तो अगर वो कहीं वो है तो है, नियम पर मानते नहीं है, जैसे कि कोई पर्यटक आए, अगर कूड़ा कवाड़ा कचरा जो है हर कहीं फेंक देते हैं, तो उन पर जो है जुर्माना होना चाहिए पर्यटक पर।
0: देखिए, हाँ, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार ने तो काफी नियम बनाए हैं, लेकिन उसे मानना ना मानना ये तो हम आम
1: हाँ,
0: इंसानों के हाथ में
1: आम इंसान
0: है
1: था
0: ना?
1: कि
0: एक
1: आपके
0: व्यक्ति।
1: को जैसे कि मानो कि मैं आपके क्षेत्र में हूँगा, तो मैं आपके क्षेत्र में कूड़ा कचरा फेंक दूंगा, तो हम सोचेंगे अरे चलो हमने क्या है, हम आज के दिन आने हैं, कल हम चले जाएंगे अपने एंजॉय करके,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: हम ये सोच नहीं रखने की हम आज के दिन आए, हम तो मेहमान की, क्योंकि ये भारत देश हमारा, ये अकेला नहीं, जैसे कि अब ये मध्य प्रदेश का भोपाल, ये मध्य प्रदेश ये आपका नहीं है, ये आपके क्षेत्र का नहीं है, पूरे भारत का हिस्सा है।
0: एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं। पूरा भारत हमारा है और उसकी देखभाल करना, उसे स्वच्छ
1: देखभाल
0: रखना हम
1: करना
0: सबका
1: सबका
0: कर्तव्य है।
1: कर्तव्य है, जैसे कि अगर आप हिमाचल आते हैं, तो ये

0: ये हिमाचल है, हिमाचल वासियों का, ये ही पूरे भारत का है,
1: बिल्कुल
0: पूरे भारत
1: बिल्कुल
0: का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ से तो आदमी की क्या बोलते जान बचती, क्योंकि पूरे अब देखो अभी थोड़ी सी बात है, अभी पूरे देश में जो है लू चल रही है, 40-45 फुट तक जो है
1: हाँ
0: चल रहा है, तो ऐसे में क्या करते हैं हिमाचल या जम्मू कश्मीर घूमने आते हैं गर्मी के लिए,
1: बिल्कुल
0: तो अगर हम उसी घर में अपने घर में आ रहे अपने देश में घूम रहे तो हम अपने देश के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: ऐसा अपने
1: बिल्कुल
0: देश के साथ
1: आपकी
0: ऐसा
1: बात
0: कर
1: जन
0: रहे
1: जन तक पहुंचेगी, और जो इस टाइप का कुछ अगर करते भी हैं तो वो नहीं करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। पूरा
0: नहीं
1: भारत
0: ऐसा
1: हमारा है,
0: ऐसा
1: उसकी सुरक्षा, उसकी स्वच्छता का ध्यान हम सबको रखना पड़ेगा,
0: जो
1: ठीक
0: आकाशवाणी
1: है।
0: भोपाल सुन रहे हैं, जो पूरा जो देश सुन रहा है, तो आप हिमाचल आए कृपया करके आप स्वच्छता का थोड़ा ध्यान रखिए, आप
1: हिमाचल जाएं
0: पूरा
1: या कहीं भी
0: स्वच्छता
1: जाएं, स्वच्छता का ध्यान हम सबको रखने की बेहद आवश्यकता है, तभी हम
0: जी
1: अपने भारत को स्वच्छ रख पाएंगे, ठीक है
0: स्वच्छ रख
1: ना।
0: पाएंगे
1: और
0: जी जी
1: स्वच्छ
0: जी
1: रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे,
0: जी जी जी
1: ठीक है
0: जी जी
1: राकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी,
0: जी
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्ते। आकाशवाणी
1: मंजरी भोपाल जी
0: मध्य प्रदेश में ही आप बात कर रहे हैं।
1: जी कालीचरण यादव बोल रहा हूँ, संदलपुर से। कालीचरण
0: क्या नाम बताया आपने? कालीचरण
1: यादव संदलपुर से, हाँ जी, पास गाँव मेरा मिला बात।
0: यादव।
1: हाँ जी, कालीचरण यादव ग्वालियर पास गाँव मेरा
0: अच्छा,
1: जी। मेरे गाना सुनना फोन करके उस कार्यक्रम में।
0: देखिए आप है ना, आज जो कॉल लगाए हैं वो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में, तो आज हम सिर्फ आपसे बात करेंगे, आपकी राय जाने

0: आपसे अपने विचार साझा करेंगे और गीत आज हमारी पसंद के होंगे। ठीक है, तो कालीचरण जी ये बताइए कि आप घूमने जाते हैं बाहर कहीं अपनी फैमिली को लेकर आउटिंग के लिए,
1: घूमने जाते घूमने बसता मैडम मेरे को
0: पर्यटन के लिए जाते हैं, तो वहां जाके आपको क्या लगता है, कुछ आपको मन आपका खुश होता है वहां जो अच्छी
1: मेरे को
0: अच्छी
1: पता चला था घूमने बाहर जाने ऐसा लगता है कि भाई घूमते रहो घर घर पे नहीं जाओ
0: ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, घर तो रहना बेहद जरूरी। हाँ
1: पता चला था मेरे को।
0: हाँ कहाँ कहाँ घूम चुके हैं आप?
1: मैं तो कानपुर वगैरह घूम आया, दिल्ली दिल्ली फरीदाबाद या इधर गया था।
0: अच्छा, तो वहां कभी आप ऐसा
1: मैंने
0: पहाड़ों पर खूबसूरत वादियों के बीच में गए
1: पहाड़
0: हैं?
1: नहीं, मैंने पहाड़ कहा इधर पहाड़
0: नहीं, पहाड़ उधर नहीं है, पर किधर तो होंगे ना, कहीं तो गए होंगे कि नहीं गए?
1: की तरफ इधर है गांव, इधर पड़ती है गांव में, उधर हमारे पास में उधर पहाड़ है घूमने के लिए।
0: तो गए हैं आप? आपको
1: हाँ
0: कैसा
1: बहुत अच्छा
0: लगता है वहां
1: लगता
0: पर
1: है,
0: जाकर?
1: बहुत अच्छा लगता है, खुली हवा मिलती है, ठीक ठंडक मिलती है। हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मंदिर भी चल गई थी। हाँ अच्छा लगता है।
0: चलिए
1: मैम
0: कालीचरण,
1: आप कौन बोली मैडम?
0: मैं कविता रावत बोल रही हूँ।
1: अब आप प्रोग्राम दिए थे यहाँ क्या प्रोग्राम दिया? आपकी आवाज अच्छी है बहुत।
0: अच्छी है, धन्यवाद।
1: नहीं प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कल अपना
1: आप
0: प्रोग्राम
1: प्रोग्राम
0: सुनिएगा,
1: जी नाम
0: कल अपना प्रोग्राम सुनिएगा आप, ठीक है?
1: बुलवा दी मैडम, ढाई नाम बोलने हमारे आप परमाणकारी जब
0: बोल
1: आपकी
0: दीजिए।
1: ड्यूटी है ना। हमारे नाम ग्वालियर से 45 साल पुराना सोता हूँ ग्वालियर का मैं, पर पत्र
0: जानते
1: नहीं पहुंच
0: हैं।
1: रहे मेरे, पत्र मिलने दे मेरे को, जब ग्वालियर से लेता हूँ तो मिलने दे, भोपाल नहीं पहुंच रहे मेरे।
0: ठीक, चलिए, ओके।
1: हमारे नाम बोलने 2:30 बजे
0: आपका नाम आएगा ना कल, आप प्रोग्राम
1: अरे
0: सुनिएगा 11 बजे
1: परमा
0: से।
1: परमा से बोल दे प्रोग्राम, चार नाम
0: बिल्कुल
1: नाम
0: बोलेंगे
1: बोल
0: हम, बिल्कुल बिल्कुल।
1: दे।
0: ठीक है कालीचरण
1: अच्छा
0: जी,

0: हेलो हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी
1: हेलो, फोन करें गीत सुने दीदी। नमस्कार
0: नमस्कार। फोन करें गीत सुने नहीं, बात आपकी गीत हमारे।
1: जी। दीदी दीदी, हम ग्रामा पोस्ट तालगांव तहसील भांडेर जिला दतिया मध्य प्रदेश से दीदी मेहरबान सिंह नागल बोल रहे हैं।
0: मेहरबान सिंह।
1: जी दीदी,
0: मेहरबानी आपकी, कॉल की आपने।
1: बड़ी मुश्किल में कॉल लगती दीदी। कार्यक्रम सभी सुनते हैं आकाशवाणी भोपाल के,
0: ये
1: और
0: तो बात
1: बचपन से
0: सही है।
1: रेडियो का शौक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं।
1: जी होती है
0: मेहरबान
1: बात
0: सिंह
1: तो।
0: जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आज का विषय है कि पर्यटन के बदलते आयाम क्या है, उसका उद्देश्य। हम जब घूमने जाते हैं तो मन में क्या विचार आते हैं, ये बताइए, क्या क्या लाभ है उससे हमें।
1: पटल जाते हैं दीदी।
0: बताइए ना, आप जाते हैं कहीं घूमने,
1: हाँ
0: तीर्थ
1: दीदी,
0: यात्रा पे गए।
1: अगर हाँ समय समय जब समय मिलता है तो बिल्कुल जाते हैं, लेकिन अभी तो टाइम मिला नहीं, तो अभी तो नहीं जा पाए हैं।
0: इस बार नहीं जा पाए होंगे, लेकिन वैसे तो कभी गए हैं ना, तो क्या फर्क दिखता है आपको? आप पहले भी जाते थे और अब भी जाते हैं, तो क्या फर्क महसूस होता है आपको?
1: देखिए दीदी, जाते तो हैं और घूमते हैं, और थोड़ा अच्छा भी लगता है। और घूमने भी चाहिए।
0: बिल्कुल। देखते ऐसा होता है ना, जब हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं तो थोड़ी सी कभी कभी बोरियत होने लगती है, और जब कुछ समय के लिए हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा सा नयापन आता है, बदलाव आता है ना। बिल्कुल।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत।
0: और अब नए आयाम में यह फर्क बहुत आया है कि जैसे पहले हम लोग है ना, कहीं बाहर जाते थे तो बहुत सारा पैसा रख के ले जाना पड़ता था, फिर उसकी हिफाजत करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती थी कि अरे पैसा रखा है, पैसा रखा है पास में, कहीं निकल ना जाए, कहीं कोई निकाल ना ले, है ना।
1: जी
0: आजकल ये
1: बिल्कुल
0: हो गया, सबके पास है ना, सब पेटीएम गूगल पे यूज करते हैं, तो आसानी से कहीं भी कैशलेस होकर जा सकते हैं, है ना।
1: बिल्कुल। जी
0: फोन के जरिए पेमेंट करते हैं, छोटे छोटे पेमेंट भी करना होता है तो लोग अधिकतर फोन के जरिए ही करने लगे हैं, तो ये काफी सुविधाजनक हो गया है हम सभी के लिए।
1: जी बिल्कुल, ये तो बात हकीकत है दीदी, क्योंकि अब तो पहल पहल से सुविधा बहुत हो गई है, क्योंकि अब तो
0: बिल्कुल।
1: मोबाइल लेन देन में आसानी हो रही, कहीं भी अपन कैच ले सकते हैं।
0: हाँ, हम दुनिया के किसी भी कोने में होते हैं तो वीडियो कॉल के माध्यम से हम सारे अपने लोगों से संवाद भी कर पाते हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: हकीकत में,
0: ठीक है, चलिए बस
1: आत्म विचार दिया आपने दीदी। और जो आप दीदी, हम जो कहना पूछना चाह रहे थे, कौन दीदी बात कर रही हैं?
0: कविता।

0: रावत
1: जी, कविता जी, आपसे शायद हमारी दूसरी बार बात हो रही हो। जो आप लोग बड़ी मेहनत से बातचीत करते हैं, अच्छी प्रस्तुति रहती है आप लोगों की।
0: जी थैंक यू वेरी मच मेहरबान सिंह जी, और
1: जी
0: एक
1: जी
0: हफ्ते
1: जी
0: बाद दोबारा कॉल कीजिएगा। जी
1: जी बिल्कुल जरूर लगाएंगे, हम तो सुनते रहते हैं कार्यक्रम,
0: जी
1: आप लोगों की बातचीत अच्छी लगती है दीदी।
0: जी धन्यवाद
1: धन्यवाद दीदी, नमस्ते
0: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार
0: नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार मैम, कैसे हो?
0: हम अच्छे हैं। पहले आप अपना शुभ नाम तो बताइए और कहाँ से
1: हाँ,
0: बोल
1: मैं
0: रहे
1: कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ। मैं मनमोजी।
0: हैं। नियाज मोहम्मद
1: हाँ
0: जी,
1: जी, फरमाइए मैम, कैसे हैं आज का
0: हम तो
1: त्योहार?
0: अच्छे हैं। आप बताइए कैसे हैं आप।
1: हम
0: आपका
1: बहुत
0: त्योहार
1: अच्छे,
0: कैसा बीता परसों
1: और
0: आप?
1: त्योहार का तो बहुत अच्छा देता है। हमारा, हम गांव से देहात में थे अभी, तो बहुत अच्छा मिलनसार गांव देहात ही होता है ना। तो अपने, अभी इंदौर में
0: बिल्कुल।
1: रहता हूँ, मगर मैं वहाँ अभी यहाँ पेटत्र गांव में आया हूँ। मैं,
0: अच्छा,
1: अपना गांव है जहाँ
0: हाँ
1: से अभी अभी मेरे भाई ने भी फोन किया था, वो वहाँ से भी बहुत श्रोता, बहुत अच्छे दर्पण में बहुत अच्छा आता था पहले। आप पढ़ती थी, सर भी पढ़ते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: कार्यक्रम आपका जो होता है मैम, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा रहता है। कहते हैं ना कि जीना तेरी गली में रहना, उसी में जैसे प्यार के रंग भरे और प्यारे अल्फाजों में। आपकी आवाज बड़ी दिलों की बातों, आवाज बड़ी सुरीली होती है सब।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: हाँ, वो बहुत अच्छी लगती है। आपका जो प्रसारण का जो है, ये जो ये कार्यक्रम जो बहुत अच्छा, श्रोताओं को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा रहा है।
0: बिल्कुल। और हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं तो कई बार हमें अपने श्रोताओं की बातें भी बड़ी अच्छी और काम की लगती हैं,
1: हाँ,
0: तो वो तो परस्पर एक दूसरे से विचार साझा करके सभी को फायदा होता है। हमें भी आप लोगों की बातचीत से काफी फायदा होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो एक दूसरे से दोनों का तालमेल
0: बिल्कुल
1: होगा
0: हाँ
1: तो इस
0: जी
1: कार्यक्रम रंगत रंगत बन जाती है।
0: बिल्कुल मंसूरी जी।
1: हाँ
0: और अभी हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे
1: जी,
0: हम घूमने जाते हैं पर्यटन के लिए, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: उसके
1: बिल्कुल।
0: जो चेंज हुए हैं, बदलते आयाम, वो आपको कैसे लगते हैं? पहले की तुलना में अभी
1: मैम
0: आपको क्या फर्क महसूस होता है?
1: देखो, पहले हमारी अपनी अपनी पीढ़ी के वक्त वक्त में इतना साधन नहीं थे, और युवा पीढ़ी के हर जगह वक्त में है। उनका जो प्रभावित है और हमारे जो प्रभावित जो शब्द है, उनमें बहुत काफी अंतर हो गया है। ये जैसे
0: जैसे बताइए आप।
1: कि जैसे अब जैसे युवा वर्ग है, युवा वर्गों को घूमने को नई नई चीजें उसे होती हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, गर्मी और भाई यहाँ गर्मी लग रही है, तो वहां चले, वहां पर उस थोड़ा सुकून मिल सकता है आप
0: हिल
1: लोगों को।
0: स्टेशन वगैरह बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: हाँ, तो ये वहां सुकून मिल सकता है आप लोगों को मिलने से। तो वास्तव में जाना भी चाहिए, घूमना भी जरूरी है मनुष्य की मानसिक जीवन को संतुलन करने के लिए। थोड़ा सा घूमना भी बहुत जरूरी हो गया।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा नियाज जी।
1: जी,
0: धन्यवाद
1: शुक्रिया
0: कॉल
1: मैम।
0: करने के
1: मैम,
0: लिए।
1: आपका नाम, शुभ नाम थोड़ा सा
0: कविता
1: बता
0: रावत,
1: दीजिए।
0: कविता रावत।
1: आज माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया मैम, शुक्रिया आपका। आप
0: जी
1: फोन, धन्यवाद
0: धन्यवाद।
1: आपको भी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। इसके साथ ही अब अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत को, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनाधिकृत गतिविधियों को हटाने का आदेश दिया गया।

गया है। यह निर्णय गृहमंत्री अमित शाह ने हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय सुरक्षा सीमा बैठक में लिया था। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी पत्रकारिता ने सामाजिक चेतना जगाने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और लोगों की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में काम किया है। प्रदेश में पांचवी और आठवीं की पुनः परीक्षा की तारीखें बदल दी गई हैं। पहले परीक्षा 1

0: में सदा नीरा जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन 2 जून तक किया जा रहा है। आज शाम 5:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन मालवी लोकायन से शुरू होगा। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच मौसम ने राहत भरा रुख अपनाया है। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। पेश है श्रोताओं की पसंद के गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम श्रोताओं की पसंद के गीत से, जो कि मौसम के अनुसार है। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की है, फिल्म सिंदूर, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवांडकर, सरिता गवांडकर, सिद्धांत गवांडकर, प्रिंस एकांश गवांडकर, सुखी, विश्वकर्मानगर नागपुर से शैलेश गवांडकर, वैशाली गवांडकर, श्वेता सुमेत गवांडकर, कुमारी ध्वनि गवांडकर, पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपिका कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का सिंदूर फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सिंदूर फिल्म का गीत। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में श्रोताओं आपको सुनवाते हैं आपके पसंद किए हुए गीत, जो कि आप पत्रों के माध्यम से अपनी पसंद हमें भिजवाते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म कटी पतंग से। आवाज किशोर कुमार की है, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत आरडी बर्मन का। और पसंद करने के लिए अपने पत्र के माध्यम से अपनी फरमाइश आपने हमको भेजी है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, कंवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, आदिति, शिवानी, शिवा श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। इसी गीत की एक पसंद हमें मिली है छोटी बलिया करजत मुंबई से, अहमद भाई फूलवाले, इकबाल अहमद फूलवाले, नुरेशा बेगम फूलवाले, काप सहेड़ा नई दिल्ली से, नशरीन आज़ाद आसमान, आमना आसमा परी और इमरान अहमद बागवान। तो आइए आप सबकी पसंद का गीत सुनते हैं, जो है फिल्म कटी पतंग से। आवाज किशोर कुमार की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हम भेजने वाले श्रोताओं के नाम है नई सड़क एमपी शाजापुर से एमएम राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन, कमल, उमेश, सरोज, आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी, सागर, रिया, रीत, ऋषभ राजावत एवं उनका समस्त राजावर परिवार। इसी गीत की पसंद हमें मिली है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचोलिया की। इस गीत की एक पसंद हमें ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम की मिली है और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से पसंद मिली है हरदेव मीका, बलविंदर पिरक, जेतिक बिरक और मीका पिरक की। आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फरिश्ता या कातिल फिल्म का गीत, शब्द रचना अनजान की है और संगीत

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फरिश्ता या कातिल फिल्म का गीत। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश में आप भेजते हैं हमें अपनी फरमाइश के पत्र और हम सुनवाते हैं आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नवरंग से, आवाजें आशा भोसले चित्रकार और साथियों की, शब्द रचना भरत व्यास की है और संगीत सी रामचंद्र का है। पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं बिल हरी खेरा से, संतोष ठाकुर, काशी तिवारी, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल, मुन्ना खान एवं ग्राम पहरुआ से रामकुमार लोधी, गोविंद यादव।

0: इसी गीत को पसंद किया है आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और साइना शर्मा ने। इस गीत की एक पसंद हमें मिली है करियादंड हट्टा जिला बालाघाट से हलास राम कटरे और नानेश्वरी कटरे की। इसी गीत को सुनना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही और मेहराजा आज़ाद नगर लखसर हरिद्वार से। तो आइए आप सबकी पसंद का सुनते हैं ये गीत जिसे हम सुनवा रहे हैं फिल्म नवरंग से।
1: कारी कारी कारी अंधियारी थी रात, एक दिन की बात, जब सघन गगन से घन न न न न गरज उठी, सावन की घटा घूंघट में छुपा कर चपल चपल बिजली की छटा, एक नार करके सिंगार, एक नार तीखी तलवार, या थी वो कटार करके सिंगार, चली उस पार जहां थे उसके किसन मुरार, चमक झुम झुम, रमक झुम झुम, चमक झुम झुम,

कानन कानन पवन चले झनन झनन झांझर बोले अमृत घोले दिल न डोले कामिनिया चले हौले हौले नयन झुके पग न रुके बेला मिलन की न टले अचरा ढले दीपक जले पिया मिलन गोरी चले छुम छुम छुम छमक छमक रुम झुम झुम झमक झमक छुम

शोर गिरे बरसात उठे घन घोर घटा करे शोर पपिया पी है कहाँ मेरा पी है कहाँ कहे गोरी के प्राणों का प्राण पपिया मन में लगन लगी मन में अगन जगी बंद किए दोना नैना उभारे प्यार पुकारे सो प्रीत किनारे चली है वो सांसों की डोर सहारे।

0: आशा भोसले चितलकार और साथियों के गाए नवरंग फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुकी भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र

0: विज्ञापनों की बुकिंग
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के रीवा केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करते हैं।
3: चौथी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि मुश्ताक सायरे को अपने घर वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन फाता सायरे को वापस नहीं भेजती है और उसे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मुश्ताक खाली हाथ वापस लौट जाता है। अब

0: अम्मी
1: मुश्ताक आ गया बेटा।
0: हाँ अम्मी।
1: अरे अकेला आया है, सारे नहीं आई?
0: नहीं अम्मी, सारे नहीं आई।
1: क्यों भला, तू गया था ना?
0: हाँ गया तो था, पर वो नहीं आई अम्मी। कह रही थी कि कुछ दिन और रहेगी अपनी अम्मी के घर।
1: बहुत दिन बाद गई थी, सो मन कर गया होगा रहने को। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ।
0: नहीं अम्मी अभी रहने दो, मन करेगा तो खा लूंगा।
1: अच्छा हसन बट भाई और पाता कैसी हैं, और उनकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ अम्मी सब ठीक है, सलाम भेजा है आप लोगों को।
1: अल्लाह सबको सलामत रखे।
0: अम्मी मैं कमरे में जा रहा हूँ।
1: खाना नहीं खाएगा क्या?
0: नहीं अभी नहीं, थोड़ी थकावट लग रही है।
1: ठीक है, जब तेरे अब्बा आज

0: जाएंगे तो खा लेना।
1: अम्मी अब्बा गए कहाँ हैं?
0: कह कर तो नहीं गए, कहीं बैठ गए होंगे गप्पे मारने। इस उम्र में बचा ही क्या है करने को।
1: अच्छा अम्मी, अब्बा आ जाए तो बता देना, तब तक मैं आराम कर लूं।
0: ठीक है।

0: कौन?
1: अरे मैं हूँ।
0: आ गए?
1: हाँ, वो जानवरों के चारे के लिए गया था। असलम को कह दिया है, वो कल पहुंचा देगा।
0: चलो, अच्छा किया।
1: सुनो,
0: हाँ?
1: मुश्ताक सारे को लेने गया था, आया नहीं अभी तक क्या?
0: थोड़ी देर पहले ही आया है।
1: है कहाँ?
0: अपने कमरे में है।
1: सारे?
0: सारे नहीं आई।
1: क्या? सारे नहीं आई है? मुश्ताक तो लेने गया था ना?
0: गया तो था, पर सारे नहीं आई।
1: वहाँ सब सलामत तो है ना?
0: मुश्ताक तो कह रहा था कि सब सलामत है।
1: तो फिर सारे क्यों नहीं आई?
0: कुछ दिन और रहना चाहती है अम्मी के पास।
1: हाँ, कुछ और बात तो नहीं हुई ना वहाँ?
0: और कुछ तो बताया ही नहीं मुश्ताक ने। जो बताया था वो मैंने आपसे कह दिया।
1: तो ठीक है। अरे कुछ दिन रहकर ही सारे को बुला लिया जाएगा।
0: मुश्ताक को बुला लेती हूँ, उसने खाना भी नहीं खाया।
1: ठीक है, बुला लो, आज साथ ही खाना खा लेंगे।

0: मुश्ताक नहीं आया?
1: नहीं, मुश्ताक की तबीयत ठीक नहीं।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: हुआ तो कुछ नहीं, पर परेशान लग रहा है।
0: अरे पूछा नहीं, क्यों परेशान है वो?
1: पूछा तो था, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
0: ये क्या बात हुई बोला?
1: अजी, जवान बेटे पर कोई बात बताने को जोर भी तो नहीं डाल सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के ना आने से मुश्ताक थोड़ा परेशान है, इसीलिए ऐसा कर रहा है।
0: ठीक है, ये हो सकता है, हो सकता है।
1: हाँ, अभी अभी तो निकाह हुआ है, सो सारे की याद तो आएगी ही।
0: फजी, मुश्ताक का खाना उसके कमरे में ही भेज दो और मेरी थाली में निकाल दो। ठीक है, बाकी बातें खाते हुए करेंगे।
1: हाँ, मुंह हाथ धोकर आओ, मैं खाना निकालती हूँ।
0: ठीक है, अरे रे जाओ, पहले मुश्ताक को खाना दे आओ।
1: तुम बैठो तो, मैं अभी देकर आती हूँ।

0: बच्चे अब अपने फैसले खुद लेने लगे हैं और उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है।
1: क्या कर सकते हैं हम, मुश्ताक को ही लो, सारे नहीं आई।

0: अल्लाह ताला पर ही तो भरोसा है जिससे मन को तसल्ली होती है, नहीं तो इन बच्चों के बर्ताव से तो।
1: और रोटी दूं?
0: हाँ, नहीं, रहने दो तो।

0: अभी बना देती हूँ।
1: नहीं, अगर परेशानी हो तो रहने देना।
0: अजी, परेशानी किस बात की, अभी बना देती हूँ।
1: सुनो, वो कुछ लकड़ियाँ देती जाना, अलाव में आग जला दूँ। ये ठंड कुछ बढ़ गई लगती है।

0: क्या कर रही हो फजी?
1: अरे मेहर, आओ आओ, बर्तन मांज रही हूँ।
0: क्यों, बहू कहाँ गई?
1: मायके गई हुई है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी सो मिलने गई थी।
0: तो क्या अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है?
1: तबीयत तो ठीक हो गई है, पर सारे कुछ दिन मायके में रहना चाह रही थी सो अभी आई नहीं है।
0: एक बात कहूँ फजी, बुरा तो ना मानोगी?
1: ऐसी भी क्या बात है बीबी कि बुरा मानू, पहले बात तो कहो।
0: अपने पर ना लेना फजी, ये पहले कह देती हूँ। हाँ
1: बीबी, तुम बात तो कहो, यूं पहेलिया क्यों बुझा रही हो?
0: फजी

0: आजकल की लड़कियों का क्या कहूँ, दिमाग खराब हो गया है।
1: अरे बात क्या हुई?
0: बात क्या होनी थी, तुम नहीं पहचानती, मेरी दूर की रिश्तेदार थी, उसने तो हद ही कर दी।
1: मेहर बताओ तो हुआ क्या?
0: वो अपने शौहर को छोड़ दूसरे लड़के के साथ चली गई।
1: अरे रे, ये तो बुरा हुआ बीबी। पता नहीं आज के बच्चों को होता क्या जा रहा है।
0: फजी, मेरी मान, तू बहू को बुला ले। ज्यादा दिन लड़की मायके में रहे तो लड़की का सर घूम जाता है। और अपने लड़के को भी थोड़ा समझा कि बीवी पर लगाम रखे, बुरा ना मानना। सुना तो मैंने यही है कि अपनी अम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर मायके में रह रही है।
1: मेहर बीबी, तुम्हारा कहना सही हो सकता है, पर सब के लिए नहीं। मेरा बेटा और मेरी बहू ऐसे नहीं हैं कि उन पर दबाव बनाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े।
0: अरे फजी, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो यूं ही कह रही थी, तूने तो बात अपने पर ले ली।
1: बीबी बुरा नहीं मानती, पर
0: वर छोड़ फजी, मैंने दुनिया देखी है और उसी तजुर्बे से कहती हूँ, तेरी बहू ठीक है, तेरा कहा मानती है, पर सबका नसीब तेरे जैसा तो होता नहीं कि बहू की सेवा पाए।
1: मेहर बीबी, बहू पर दबाव बनाने से बहू सेवा करेगी ही, अब ये बात तो कोई तय नहीं है ना।
0: फजी, तू मेरी बात समझ नहीं रही है कि मैं कह क्या रही हूँ। लोग कहते हैं कि मुश्ताक को घुमाकर बहू मायके में मजे कर रही है।
1: किसने कहा तुमसे? ये सब झूठ है।
0: अरे ये तो मैं भी जानती हूँ कि झूठ है, पर कहने वालों के जुबान थोड़े ही बंद की जा सकती है। उनके मन में जो आए सो कहते हैं, पर उनकी बातों पर तू ध्यान न देना।
1: मेहर बीबी, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू अच्छी है और मुश्ताक को भी प्यार करती है। जमाने को क्या, किसी का भला तो देखा जाता नहीं, बकने लगते हैं।
0: छोड़ो भी उनकी बातों को, सुना है कि मुश्ताक बहू को लेने गया था, ये बात तो सच है ना?
1: हाँ, गया तो था मुश्ताक,
0: फिर भी बहू नहीं आई, यही ना?
1: अरे अम्मी की बीमारी में गई थी, कुछ दिन रहना चाहती थी सो नहीं आई, और क्या।
0: लोग ये तो नहीं जानते, बस कह देते हैं कि।
1: क्या कहते हैं?
0: यही कि मुश्ताक का अपनी बीवी पर कोई जोर नहीं चलता, बीवी जो कहती है मुश्ताक वही करता है, गुलाम हो गया है।
1: देखो बीबी, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, उन्हें ही ये फालतू बातें सूझती हैं। और एक बात कह देती हूँ, हाँ, बुरा ना मानना, तुम जहाँ भी ये फालतू बातें सुनती हो ना, अल्लाह कसम अपने तक ही रखा करो बीबी। मुझे इन फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने बेटे मुश्ताक को जानती हूँ और अपनी बहू सारे को भी जानती हूँ।
0: नाराज ना हो फजी, लोग तो यूं ही बकते हैं, मैंने तो जो सुना था वही कह दी, बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना।
1: तुम भला क्यों माफी मांग रही हो मेहर बीबी? वक्त आएगा तो वे लोग देखेंगे कि घर क्या होता है और घर को चलाया कैसे जाता है।
0: अच्छा फजी, मैं तो अब चलूंगी, बड़ी देर हो गई।
1: थोड़ी देर बैठो, चाय तो पीती जाओ,
0: फिर कभी पी लूंगी।

0: भी तो चलती हूँ। और हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानना, तुम्हें अपना समझती हूँ इसीलिए कह देती हूँ।
1: कोई बात नहीं, अपनों की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या?
0: अच्छा, अब चलती हूँ। खुदा हाफिज।
1: हाफिज खुदा।

0: Fuzzy? Fuzzy? Fuzzy? क्यों क्या हुआ फजी? यूं गुमसुम से क्यों बैठी हो?
1: नहीं कुछ नहीं, यूं ही बैठी हूँ।
0: यूं ही बैठी हो तो गुमसुम से क्यों? कोई बात हुई क्या? भाई तुम्हें इस तरह से उदास बैठे पहले तो नहीं देखा।
1: छोड़ो भी बातें बनाना।
0: अरे अरे तुम तो नाराज हो गई। बोलो बोलो क्या बात है?
1: नहीं कुछ भी तो नहीं।
0: फजी तुम परेशान हो और तुम्हारी परेशानी साफ साफ पता चल रही है। ठीक है अब तुम बताना ना चाहो तो भाई तुम्हारी मर्जी।
1: सारे को बुलवा लेते।
0: सारे को बुलवा लूं? क्यों क्यों बोला? अरे वो मायके ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: सारे है तो मायके में, पर लोगों को क्या कहें।
0: अरे इसमें लोगों को कहने वाली क्या बात हो गई?
1: आसपास के लोग क्या क्या बातें करते हैं तुम्हें क्या पता।
0: लोगों का क्या है? वैसे हुआ क्या जो तुम इतनी जिद कर रही हो कि सारे को बुला लूं?
1: आज मेहर बीबी आई थी, उन्होंने ही बताया कि लोग सारे और मुश्ताक को लेकर क्या क्या कहते हैं।
0: अरे तुम भी किसकी बात लेकर बैठ गई? अरे वो मेहर बीवी को तो बस जो मन में आया बक दिया, ना आगे सोचा ना पीछे, यूं ही मनगढ़ंत बोलती रहती है।
1: पर सारे को मायके गए भी तो कितना समय हो गया।
0: अरे भाई सारे अपनी अम्मी के घर ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: देखो जी, निकाह के बाद मायके में इतने दिन रहना अच्छा नहीं होता। अब मुश्ताक को बोल दो कि सारे को ले आए।
0: ठीक है मुश्ताक को तुम ही बोल दो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
1: ठीक है, मुश्ताक घर आता है तो कहूंगी कि कल ही सारे को लेने चला जाए।
0: ठीक है जैसा तुम ठीक समझो। और हाँ देखो देखो ये एक बात मैं कह देता हूँ, तुम मेहर बीवी जैसी औरतों की बातें मत सुना करो।
1: अरे मैं कोई सुनने थोड़े ही गई थी, वो तो खुद आई थी यहाँ।
0: देखो फजी लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो।
1: कैसे ना दूं, आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है।
0: तो ठीक है हसन भट्ट को पैगाम भेजता हूँ कि वो सारे को भेज दे।
1: हाँ मुश्ताक को भी कहती हूँ कि सारे को लेने के लिए चला जाए।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आपने सुनी धारावाहिक सिसकिया की चौथी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के चलते सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर अहम कदम उठाया है। इसके तहत सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसान कल्याण वर्ष के तहत अब प्रदेश में सिर्फ 5 रूपये में सिंचाई पंप का नया बिजली कनेक्शन मिल रहा है। बाकी की राशि किश्तों में चुकानी होगी और अधिक जानकारी के लिए बिजली दफ्तर या कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। उज्जैन संभाग के 11 मंदिरों

के पुनरुद्धार के लिए 200 करोड़ रुपए के टेंपल बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार पर कुल 1100 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगामी 31 जुलाई तक टेंपल बॉन्ड जारी कर दिए जाएंगे। भोपाल के भारत भवन में सदनीरा जलरंग संवर्धन कार्यक्रम

सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नजरों में। इस विचार के साथ महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को कल्पना शुक्ला का नमस्कार। बहनों, आज का युग वैश्वीकरण का युग है। दुनिया के सभी देश एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। जब विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रों में मिलकर कार्य करते हैं तो इसे वैश्विक सहभागिता कहा जाता है। यह सहभागिता विश्व में शांति, विकास और सहयोग को बढ़ावा देती है। वैश्विक सहभागिता के माध्यम से देश अपने ज्ञान, तकनीक और संसाधनों का आदान प्रदान करते हैं। इससे नई खोजों और विकास कार्यों को गति मिलती है, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्रों में और देशों के बीच सहयोग से मानव का जीवन अधिक सुविधाजनक बना है। प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान भी अकेले किसी एक देश द्वारा संभव नहीं है। इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना पड़ता है। कोरोना महामारी के समय विश्व के कई देशों ने एक दूसरे की सहायता की, जो वैश्विक सहभागिता का अच्छा उदाहरण है। वैश्विक सहभागिता से विभिन्न देशों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को जानने का अवसर मिलता है। विद्यार्थी देशों में शिक्षा प्राप्त कर नए अनुभव हासिल करते हैं। इससे आपसी समझ और भाईचारा बढ़ता है। बहनों, वैश्विक सहभागिता आधुनिक विश्व की आवश्यकता है। यह केवल देशों के विकास के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। बहनों, सभी देश मिलजुल कर कार्य करें तो विश्व में शांति, समृद्धि और सहभागिता स्थापित की जा सकती है। बहनों, गीत संगीत जो सभी के दिलो दिमाग को तरोताजा करते हैं, तो आइए सुनते हैं गीत साथी हाथ बढ़ाना, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम है नया दौर।

0: बहनों, अभी हमने सुना गीत साथी हाथ बढ़ाना, जिसे गाया था आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने। फिल्म का नाम नया दौर।
1: बहनों, आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर करिमा तिवारी, जो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज जबलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आसीन हैं, जो टॉक्सिकोलॉजी डिपार्टमेंट में है। अच्छा करिमा जी, ये बताइए, जैसे कि गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सी बीमारियां फैलती हैं?
2: गर्मी के मौसम में चूंकि गर्म, पूरा वातावरण गर्म होता है, इसलिए गर्मी के मौसम में लू लगना, डिहाइड्रेशन, दस्त, उल्टी, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और त्वचा संबंधी बीमारियां अधिक फैलती हैं।
1: अच्छा अच्छा, ये जैसे कि लू लगने के मुख्य कारण क्या होते हैं?
2: लू लगने के मुख्य कारण है तेज धूप में अधिक समय तक रहना, शरीर में पानी की कमी हो जाना, चूंकि बहुत पसीना आता है, जिसकी वजह से हमारे

0: से पानी की कमी होने लगती है, गर्म हवाओं के संपर्क में आना और सिर ढककर बाहर ना निकलना लू लगने के मुख्य कारण।
1: जी अच्छा कर्मा जी, जैसे कि ये गर्मी से बचने के लिए लोगों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
0: लोगों को अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए, दोपहर की तेज धूप से बचना चाहिए और बाहर निकलते समय छाता या टोपी का उपयोग करना चाहिए और जब भी घर से बाहर निकले तो एक गिलास पानी पी के निकले।
1: अच्छा,
0: आने के बाद तो पानी ना पिए लेकिन जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहले एक गिलास पानी पी के निकले।
1: अच्छा, शरीर में पानी की कमी से क्या समस्याएं हो सकती हैं?
0: पानी की कमी होने से चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द, थकान, बेहोशी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती
1: हैं। अच्छा गर्मी में जैसे कि गर्मी में कौन कौन से पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं? आजकल गर्मी में जैसे कि पेय पदार्थ लोग ज्यादा पीते हैं, तो कौन से पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं
0: जो इस मौसम में अवेलेबल होते हैं? पहली बात तो उन पेय पदार्थों को पीना चाहिए, जैसे गर्मी में नींबू का पानी, नारियल पानी, छाछ, लस्सी, आम पना, ताजे फलों का रस, गन्ने का रस, ये सभी लाभदायक है।
1: अच्छा, ये गर्मी के मौसम में लोग जैसे बाहर का खाना, अब आजकल का चलन ही है कि लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, तो गर्मी, क्या गर्मी के मौसम में बाहर का खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है क्या?
0: बिल्कुल हाँ, गर्मी में बाहर का बासी या खुला खाना जल्दी खराब हो जाता है जिससे फूड पॉइजनिंग और पेट की बीमारियां हो सकती हैं।
1: अच्छा, ये डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण क्या होते हैं?
0: डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण है अत्यधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, कमजोरी, चक्कर आना, कम पेशाब आना और जो पेशाब का कलर होता है वो बहुत डार्क येल्लो हो जाता है।
1: अच्छा,
0: और शरीर में थकान महसूस होना डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षण है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गर्मी के मौसम में संतुलित भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए, हमेशा कभी भी जाएं तो पानी की बॉटल हमेशा अपने साथ रखें, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, साफ सफाई रखें, तेज धूप से बचकर रहें, तभी हम सब स्वस्थ रह सकते हैं।
1: सचमुच गर्मा जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और मैं आशा करती हूँ कि हमारी बहनों को भी बहुत अच्छा लगा होगा आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद कर्मा जी।
0: वैसे भी सब बहनों को बहुत प्यार और बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत आनंद आया। नमस्कार।
2: बहनों, जल मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी पर जीवन जल के बिना संभव नहीं है, लेकिन आज बढ़ती गर्मी, जनसंख्या वृद्धि और जल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी के कारण लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गर्मी में तापमान बढ़ने से जल स्रोत तेजी से सूखने लगते हैं। लोग पानी, खेती और अन्य कार्यों के लिए अधिक मात्रा में पानी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा वर्षा जल का सही ढंग से संरक्षण न हो पाना भी जल स्तर गिरने का मुख्य कारण है। पेड़ों की कटाई, बढ़ता शहरीकरण और कंक्रीट सड़कों के कारण वर्षा का पानी जमीन में नहीं समा पाता, परिणाम स्वरूप भूजल का पुनर्भरण नहीं हो पाता और जल स्तर नीचे चला जाता है। बहनों, जल स्तर कम होने से कुएं, तालाब और हैंडपंप सूखने लगते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता, जिससे फसलें प्रभावित होती हैं और कई स्थानों पर लोगों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। बहनों, इस समस्या के समाधान के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बारिश की पानी जमीन में पहुंच सके। पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाने चाहिए क्योंकि वह जल संरक्षण में सहायक होते हैं। हमें पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और अनावश्यक जल व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। खेतों में सिंचाई जैसे आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। सरकार और समाज दोनों को मिलकर लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। बहनों, जल ही जीवन है। यदि आज हमने जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में जल संकट और भी गंभीर हो सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह पानी बचाए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे। सामूहिक प्रयासों से ही हम

गिरते जल स्तर की समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहनों आइए सुनते हैं गीत आया सावन झूम के, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम है आया सावन झूम के।

हमने सुना गीत आया सावन झूम के, जिसे गाया था मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम आया सावन झूम के। बहनों, मुझे पता है आपको

इंतजार है आज के व्यंजन का। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ आम का पना। बहनों, आम पना भारत का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक पेय है, जो विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में बनाया और पिया जाता है। यह कच्चे आम से तैयार किया जाता है और शरीर को ठंडक पहुंचाने में बहुत लाभदायक माना जाता है। इसका स्वाद खट्टा मीठा होता है, इसलिए बच्चे और बड़े सभी इसे पसंद करते हैं। तो आइए जानते हैं आम पना बनाने के लिए किन सामग्री की जरूरत पड़ती है। सामग्री है कच्चा आम, चीनी, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, पुदीने की पत्तियां, पानी और बर्फ के टुकड़े। विधि है कच्चे आम को अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद आमों को कुकर या बर्तन में उबाल लें और ठंडा होने पर छिलका हटा दें। फिर आम के गुदे को मिक्सी में डालें और उसमें चीनी, काला नमक, भुना जीरा और पुदीने की पत्तियां मिलाएं और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह से पीस लें। तैयार मिश्रण को बड़े बर्तन में निकालें और ठंडा पानी मिला दें। अब गिलास में बर्फ डालकर ठंडा ठंडा आम का पना परोसें। बहनों, आम का पना शरीर को ठंडक पहुंचाता है, लू से बचाने में मदद करता है, पाचन के लिए लाभदायक होता है और विटामिन सी से भरपूर होता है। बहनों, आइए सुनते हैं गीत पीपल के पतवा पर, जिसे गाया है सोनू निगम और जसपिंदर नारूला ने। फिल्म का नाम है सूर्यवंशम।

बहनों, अभी हमने सुना गीत पीपल के पतवा पर, जिसे गाया था सोनू निगम जसपिंदर नारुल्ला ने। फिल्म का नाम सूर्यवंशम। बहनों, अब इसी के साथ समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्वीकारें कल्पना शुक्ला का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये हमारे आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है अंतराल का।
1: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है और आज हम आपको इसमें सुनवा रहे हैं संध्या पाठक के गाए कुछ लोकगीत।

वचन गीत, आवाज संध्या पाठक की थी। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है सुहाग गीत, आवाज संध्या पाठक की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत और आज हम आपको सुनवा रहे हैं संध्या पाठक के गाए कुछ लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए एक बैलन गीत, आवाज संध्या पाठक की और प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की।

संध्या पाठक के गाए इस बैलन गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब संपन्न होता है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के अंतर्गत अब सुनिए सुगम संगीत। ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी रीवा की ही प्रस्तुति है और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए भजन और गीत।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लल्लू राम शुक्ला के गाए कुछ भजन। अभी आपने सुनी कबीर की रचना, अब सुनिए ब्रह्मानंद की रचना आवाज लल्लू राम की।
1: वृंदावन कुंज भवन नाचत
0: आवाज लल्लू राम शुक्ला।

0: अभी आप सुन रहे थे नीरज की रचना, आवाज़ लल्लूराम शुक्ला की। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की उपस्थिति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। समय है अंतराल का।
1: आकाशवाणी भोपाल से हर शाम रोजाना 5:02 पर सुनिए युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। ट्यून कीजिए मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर, या फिर न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर। लॉगिन करें और सुने ज्ञान सूचना मनोरंजन की त्रिवेणी, युवाओं की वाणी युववाणी, प्रतिदिन शाम 5:02 पर।
2: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: आकाशवाणी भोपाल के लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी में हर शाम 5:02 पर सुनिए शानदार नगमे, ज्ञान विज्ञान और करियर की बातें, युवा प्रतिभाओं से भेंट, विषय विशेषज्ञों के साक्षात्कार और रेडियो एंकर्स की रोचक लुभावनी प्रस्तुतियां। ट्यून करें मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। तो सुनना ना भूलिए आपका अपना कार्यक्रम युववाणी।
3: कवि श्री राग तेलंग।
4: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर यह संदेश बहुत जरूरी है दर्ज करना कि आधुनिक कंक्रीटी संस्कृति में जब संगीत में संस्कृति के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश आकाशवाणी लगातार करता रहा है, और आकाशवाणी का यह सफर जिसमें हम सब लोग सहयात्री के रूप में शामिल हुए हैं, हमारे लिए यह गौरव का क्षण है कि एक स्वर की यात्रा ने 100 वर्ष की दिशा में कदम रख दिया है और मात्र 10 वर्ष ही बचे हैं। आकाशवाणी शब्द का आशय ही यह है कि वह अनहद नाद के प्रति चेतना जगाने का काम भारतीय भूमि पर कर रहा है। इसके लिए

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लोफर फिल्म के गाए आशा भोसले के गीत से, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने सुना लोफर फिल्म का गीत, शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। आवाज लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत एक बार फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने सुना दो रास्ते फिल्म का गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। केंद्रीय

0: मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनते ही सीमा पर फेंसिंग के लिए जमीन का गतिरोध एक हफ्ते में दूर कर लिया गया है।
1: G7 और G13 का लोकार्पण हुआ है। वॉच टावर से लेकर, कनेक्टिंग रोड से लेकर, पीने से पानी से लेकर मेडिकल सुविधाएं, रहने की व्यवस्थाएं और नई फेंसिंग इंट्रोड्यूस करना, हर दृष्टि से एक लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हमने कार्य योजना बनाई थी और 2 साल में हमारा एक वल्नरेबल दिखता हुआ क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोक भवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। CM डॉक्टर यादव आज शाम को भोपाल वापस आ जाएंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। इस बार रक्षा अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। साथ ही मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी ये डिग्री प्रदान की गई है। छतरपुर में ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए जिला प्रधान न्यायाधीश रविन्द्र सिंह और कुटुंब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश देवालिया आज साइकिल से अदालत पहुंचे। न्यायाधीश ने बताया कि अब प्रत्येक शनिवार सभी न्यायिक अधिकारी साइकिल से ही न्यायालय आएंगे ताकि आमजन को ईंधन बचत और स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसा करना दरअसल पर्यावरण के लिए अनुकूल है और हम अपने देश हित के लिए भी काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मंत्रालय ने यह सर्वेक्षण 2023-24 में संचालित किया था। और अब बात मौसम की करते हैं। मध्य प्रदेश में नौतपा के बीच मौसम का अनोखा रूप देखने को मिल रहा है। प्रदेश का आधा हिस्सा जहां भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, वहीं बाकी आधे हिस्से में तेज आंधी और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, भिंड और मंदसौर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 8 जिलों में लू की भी चेतावनी है। हाल ही में हुई बारिश के कारण प्रदेश के ग्वालियर और दतिया जैसे शहरों के तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आई है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। सीहोर जिले में स्कूल चले हम अभियान के तहत शिक्षा पुंज पॉइंट 2 नवाचार जारी है। कलेक्टर के निर्देश पर अक्षर साथी घर घर जाकर ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शाला से जोड़ रहे हैं। आगरमालवा जिले में महावारी स्वच्छता दिवस पर ग्राम खेरिया और कानड़ स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। किशोरियों को इस दौरान स्वच्छता, एनीमिया से बचाव और पौष्टिक आहार की जानकारी दी गई। भोपाल जनजातीय संग्रहालय में कल संभावना कार्यक्रम होगा। इसमें राजगढ़ का मालवी गायन, नर्मदापुरम का कबीर गायन और डिंडोरी का गुदुम बाजा नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। और रतलाम जिले में गुलाब चक्कर पर साहित्यिक संगम कविताई शब्दों की शान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें नए रचनाकारों ने देशभक्ति, मातृप्रेम और नारी शक्ति पर मंत्रमुग्ध करने वाली प्रस्तुति दी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुने शाम 7:10 पर। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमा के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग

0: घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov

0: .in और हमारे न्यूज़ॉन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिले, स्वेयरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,40,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट नाउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लता मंगेशकर के गाए खट्टा मीठा फिल्म के गीत से। लता मंगेशकर का साथ दे रहे हैं किशोर कुमार और साथी, शब्द रचना है गुलजार की और संगीत राजेश रोशन का।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना गुलजार का लिखा गीत। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की थी और फिल्म का नाम था खट्टा मीठा। इस गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम थे ग्राम महसवाड़ी, तहसील मलकापुर।

0: महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय खिरोटकर। इसी गीत को पसंद किया था कोटवा नारायणपुर बापा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय ने। दुविधा नेवादा गाजीपुर से इस गीत को पसंद किया था प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय ने। और रेलवे कॉलोनी बठिंडा से इस गीत की पसंद आई थी जमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार की। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म चरस से। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। गीत को पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर बापा बट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। इसी गीत को पसंद कर रहे हैं गोरीनगर इंदौर से आनंदपुर कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। गीत की एक पसंद मिली है महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिण ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर की। तो इन सबकी पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म चरस से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: अच्छा गुड नाइट।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में चरस फिल्म का गीत, शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म दादा से, और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम है बिहार कॉलोनी लोनी से नसीमुल इस्लाम गुनोरी, प्रकाश वीर राजपूत डोंडी लोहारा बालोद से, कमलेश जयपुरिया टाउनशिप भिलाई से, अनुश्री प्रदीप पिंकी और प्रमिला प्रदीप जेल रोड रायगढ़ से, लालचंद मिश्रा और नरेंद्र कुमार राम, गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद रोहित व मोहित, बेरडी से हुकुम करमरकर सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची करमरकर, तनु करमरकर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुर, दतरंगी से भागवत वर्मा। इन सब की पसंद का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है दादा से, आवाज यशोदास की है, शब्द रचना कुलवंत चानी की और संगीत उषा खन्ना का है।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में भी आपने सुना कुलवंत जानी का लिखा गीत, आवाज़ यशोदास की थी और फिल्म का नाम था दादा। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश भेजने वाले श्रोताओं के नाम हैं सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, पोतरा मुस्ताबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। इस गीत की एक फरमाइश हमें मिली है प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले की, गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। इसी गीत को पसंद किया है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ज्योति, रियांश ठाकुर ने। भाटापारा ततरंगी से इसे पसंद कर रहे हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा। और सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सबने पसंद किया है फिल्म वो कौन थी का गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने, शब्द रचना राजा मेहंदी अली खान की है और संगीत मदन मोहन का है। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इंदिवर का लिखा गीत, आवाज कुमार सानू और साधना सरगम की है और फिल्म का नाम है जुर्म। और पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम हैं कोटवा नारायणपुर, बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का जुर्म फिल्म का ये गीत। भाभी वो मुझे नीचे गिरी।

0: कितना केवल राजवीय मिलोगे।
1: कुमार सानू और साधना सरगम के गाए फिल्म जुर्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल एक दिवसीय दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे वहां कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 144वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े दर्शाए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में है। वे यहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और लोकभवन श्रीनगर का दौरा भी करेंगे। उन्होंने कहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रबंधन का अध्ययन कर वे मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का मॉडल स्टेट बनाएंगे। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर सहित प्रदेश के 9 जिलों में ओले गिरने और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सांतकालीन सभा के कार्यक्रमों पर। सांतकालीन सभा में आकाशवाणी मध्य प्रदेश के प्रसारण के अंतर्गत शाम 5:02 पर सुनिए कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति होगी। फिल्म

भारतीय प्रसारण के 90वें वर्ष पर आकाशवाणी की विकास यात्रा। इस विषय पर पूर्व कार्यक्रम प्रमुख आकाशवाणी भोपाल एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री राजेश भट्ट से शुभम तिवारी की बातचीत। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत 7:21 पर सुनिए ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम सभा। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का कार्यक्रम प्रसारण समय है 7:45। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से रात 8 सुनिए सुर्खियों में। 9:30 पर आप सुनेंगे युवा भारती और रात 10 संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में सुनिए स्मिता मोक्षी का ख्याल गायन। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। इस समय दोपहर के 3:02 हुए हैं। हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

0: होगा?
1: पर ये आखिरी बार होगा, इससे बाद में कभी नहीं
0: पहले
1: करूंगी,
0: पहली बार
1: किया नहीं है।
0: कोई बात नहीं बेटा,

0: बेटा अभी तो मैंने किया ही नहीं है।
1: हाँ
0: बेटा वो

थी लड़की। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जी एम दुरानी और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी अजीज़ काश्मीरी की और संगीत विनोद का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत तलाश। इस फिल्म का गीत आप सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शब्द रचना मजरू की है और संगीत एस टी बर्मन का।

बेजू बावरा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शमशाद बेगम, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में। शब्द रचना थी शकील बदायूनी की, संगीत नौशाद का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मौसम फिल्म का गीत। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत मदन मोहन का।

0: मौसम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल एक दिवसीय दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे वहां कोट्टायम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का

0: उद्घाटन किए। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि बीएसएफ की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरीके से बदला जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। सेना प्रमुख पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े सामने आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने 2 दिनी जम्मू कश्मीर के दौरे के अंतिम दिन आज श्रीनगर में हैं। वे यहां वे स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और लोकभवन श्रीनगर का भी उन्होंने दौरा किया। देर शाम को उनका भोपाल वापस पहुंचने का प्रोग्राम है। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के बीच कई हिस्सों में बारिश, तेज आंधी और ओलावृष्टि की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आज कई जिलों में तेज धूप के कारण गर्मी पड़ रही है और कुछ जिलों में आंधी तूफान का दौर चल रहा है, जबकि कुछ जिलों में ओले गिरने और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी भोपाल है। अब सुनिए झलक की लॉटरी खुल गई। लेखक अशोक बुरानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।
2: प्रस्तुत है अशोक बुलानी की लिखी झलकी लॉटरी खुल गई। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता हैं राकेश ढोंडियाल।

0: पहना।
1: हाँ।
0: नवयुग का अंधियारा नहीं, नवयुग का उजियारा, उजियारा छाया।
1: पर चिंटू आजकल तो अंधियारा ही छाया हैगा।
0: अरे छाया होगा अंधियारा, पर गीत में तो उजियारा ही हैगा।
2: अरे ओ महारानी, ये गाने बजाने का काम ही रह गया है बस, ढेर सारा काम पड़ा हैगा, वो कौन करेगा? डूड जैसी बड़ी हो गई, पर अकल नाम को नहीं हैगी तेरे में। हाँ
1: पर अम्मा,

0: आ गई।
1: हेलो कल्लो बात सुन दिंदी में क्या रही आंगी दीदी कि हमें नहीं करनी है शादी।
0: अरे तू चुप कर रहे हा? बीच में झकर झकर किए जा रहा है।
2: हाँ हाँ सही कह रहे हैंगे हम, हमें नहीं करनी शादी।
0: तो क्या जिंदगी भर बैठी रहेगी हमारी छाती पे? हमें नहीं करनी शादी, जैसे लड़के वाले लाइन लगा के खड़े हैंगे तुझसे शादी करने को, छह छह लौट गए।
1: अम्मा आए भी तो एक से एक नमूने ही थे।
0: अरे तो कोई राजकुमार आएगा इसे बहाने?
2: ना आए कोई राजकुमार, पर किसी दहेज के लालची से भी शादी नहीं करनी हमें। हाँ
0: अरे वाह रे।
1: अरे वाह की क्या बात है अम्मा, सही तो कह रही है दीदी।
0: अरे पर ऐसे लोग कहाँ है इस दुनिया में।
1: अम्मा ये पिछली बार वाला लड़का तो थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा था, बात भी जमती दिख रही थी।
0: खा पी के पूछताछ करके छोरे के बाप बोले गाना बजाना जानती हो, कोई भजन सुनाओ।
1: भजन नहीं गा सकती इसलिए वापस चले गए, जे तो बहुत जाती हैगी।
0: लड़के वालों के तो ऐसे ही नखरे हो रे। अब पूछो उन समझदारों से कि भैया रे भजन सुनने का शौक है तो क्या बार बार बहू को सामने बिठा कर भजन सुनोगे? रेडियो का है नहीं खरीद लेते, फिर सुनो बैठ के भजन जो जी में आए।
1: अच्छा तो इसीलिए हमारी बहना भजन की प्रैक्टिस कर रही है।
0: क्यों बेटा। अच्छा तो ठीक है गा बेटा गा, पता नहीं कौन सिर फिरा फिर भजन की फरमाइश कर बैठे।

0: ये है हमारी जान के दुश्मन, डले हैं आराम से खटिया पर, खर्राटे ले रहे हैं। चिंटू उठा तो अपने बापू को।
1: हम नहीं उठाते हैं अम्मा, डांट लगाएंगे हम ही को। हाँ
0: अरे उठा दे बेटा।
1: नहीं तुम क्यों नहीं उठाती?
0: सुबह सुबह ही हमारा झगड़ा करने का मूड नहीं है।
1: हाँ तो सुबह सुबह हमारा भी पिटने का मूड नहीं है।
0: अरे वाह रही आजकल की औलाद, अरे क्या फायदा ऐसी औलाद का। हाँ
1: ठीक है अब ज्यादा ताव मत दिलाओ अम्मा। हाँ अभी उठाए देते हैंगे।
0: उठते ही दन्न से हुक्म देंगे। चाय कहाँ है? घर कोई ऑफिस समझ रखा है। आवाज दो और चपरासी चाय लेके हाजिर।
1: बापू, ओ बापू, बापू, बापू।
2: अबे कौन है कमबख्त?
1: हमें बापू।
2: अबे बापू के बच्चे काहे को आधी रात को उठा रहे हैं?
0: आधी रात? सुबह के 8 बज गए हैंगे और अभी तक तुम्हारी आधी ही रात हो रही है।
2: अरे बच्चों की अम्मा, दरअसल बात ये है कि हम बढ़िया सपना देख रहे थे।
0: हाँ सपना ही देखते रहना कि सोने चांदी के बर्तनों में माल पुए उड़ा रहे हैं।
2: सच्ची में आज भी यही सपना आ रहा था, पिछले कई दिनों से यही सपना आ रहा है।
1: वही सपना बापू कि हम बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैंगे, ढेरों नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े हैंगे।
3: कलर टीवी हैगा, फ्रिज हैगी,
1: डीवीडी पर फिल्म देख रहे हैंगे और अम्मा बापू झगड़ रहे हैंगे कि कौन सी फिल्म देखें।
3: चिंटू अम्मा बापू सपने में भी झगड़ रहे हैंगे क्या?
2: अबे चुप। ए चिंटू की अम्मा, ए तुम्हें मालूम है सुबह सवेरे वाला सपना बिल्कुल सच होता आएगा।
0: तो ये तुम्हारा सुबह सवेरा है? 8:30 बज रहे हैंगे।
2: अरे पर मेरा सपना तो सुबह 4 बजे ही शुरू हो गया था। हाँ मंदिर की घंटी बज रही थी उस वक्त और उसी वक्त मेरी नींद खुल गई। अरे देखता क्या हूँ कि सारा कमरा रोशनी से जगमगा रहा हैगा यार। मैंने सोचा बत्ती बंद करना भूल गया होऊंगा।
1: फिर क्या हुआ बापू?
2: अरे फिर क्या, देखता क्या हूँ कि जे रोशनी तो साक्षात देवी माँ के चरणों की थी, साक्षात लक्ष्मी मैया दरवाजे पे मुस्कुराती खड़ी हैंगी।
0: अरे जाओ रहन दो, गप्पे हाँक रहे हैंगे सवेरे सवेरे।
2: हाँ। अरे गप नहीं है बच्चों की अम्मा, सच्ची कह रहे हैं हम। हाँ 10 लाख का आशीर्वाद दिया है हमें।
1: पर बापू 10 लाख आएंगे कहाँ से?
2: अच्छा ये बताओ आज कौन सी तारीख है?
0: 28 तारीख है जी आज।
2: 28 तारीख? अरे वो मारा।
1: क्या मारा बापू, मच्छर?
2: अबे चल। ए बच्चों की अम्मा, तुमको लॉटरी का टिकट दिया था ना, ये संभाल कर रखने को। बोले

0: के आओ तो जरा जल्दी लाओ।
1: पर इनाम विनाम कुछ निकलता तो है नहीं।
0: ओहो, जब बोलती हो बेसुरा बोलती हो। तुम लाओ तो।
1: हाँ हाँ लाती हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ, कल 27 तारीख को लॉटरी का डिरा खुल गया होएगा। आज 28 तारीख है। आज अखबार में डिरा छपा तो जरूर होएगा। अभी थोड़ी देर में अखबार वाला हमारी किस्मत का दरवाजा खटखटाएगा।
2: अखबार वाला? पर बापू, हमारे अखबार आता कहाँ है?
1: ये लो जी टिकट।
0: टिकट? अरे 10 लाख का चेक हैगा जे। चिंटू बेटा, जा वर्मा जी के जहाँ से अखबार तो ले आ।
2: हम नहीं जाएंगे वर्मा जी के यहाँ।
0: क्यों?
2: रोज रोज मांगने में हमें शर्म आवे। हाँ
0: अरे जा जा बेटा, आज हो ले यार, ये बस आखिरी दिन, फिर कल से तो आनंद ही आनंद है। अरे दुनिया भर के अखबार मंगाएंगे और क्या कहते हैं वो तेरी खूब सारी मैगजीन।
1: जा बेटा जा ले आ।
2: ठीक है जी, ले आता हूँ। हाँ
1: रुक चिंटू, हम भी चलते हैं।
2: हाँ, चल चल चल।
1: अरे दो दो लोग जाओगे, एक अखबार उठा दे।
0: अरे जाने दे, लॉटरी वाला अखबार है आखिर।
2: बापू,
0: क्या हुआ?
2: वर्मा जी के अखबार तो नहीं मिला बापू।
0: अखबार नहीं मिला?
2: हाँ बापू, उनका अखबार तो शर्मा जी ले गए होंगे।
0: अरे यार, जे शर्मा जी अजीब लीचड़ आदमी है, अपना खुद का अखबार तक नहीं मंगा सकते जे।
1: अरे तो वर्मा जी का अखबार शर्मा जी ले गए हैं तो शर्मा जी के यहाँ से लेते आते रहा ना। तो बुद्धू के बुद्धू।
2: अम्मा, अब बुद्धू मत कहियो ना, दीदी गई है शर्मा जी के अखबार लाने।
1: ये लो बापू अखबार।
0: हाँ, ये अखबार नहीं, 10 लाख का पिटारा है जे। मुझे दे, कहाँ है ना दे।
1: ये लो।
0: हे लक्ष्मी मैया, लगा दे बेड़ा पार। अरे चिंटू, एक कौन से पेज पर आता है वो लॉटरी का रिजल्ट?
2: अंदर के पेज पे आवे बापू, पन्ने पलट कर देखो ना।
0: अरे यार, ये तो भविष्य फल है। लिखा है बीबी से खटपट। देखा देखा बच्चों, सही लिखा है ना। आज ही तुम्हारी माँ से खटपट हुई कि नहीं हुई?
1: अरे वो तो रोज ही होती है, कौन सी नई बात है।
0: चुप रहे, आगे लिखा है अचानक धन की प्राप्ति। अरे आज तो सच्ची में कुछ होने वाला है। ये रहा लॉटरी का डेरा। अरे चिंटू पढ़ तो बेटा नंबर ले।
2: हाँ, लाओ लाओ।
0: हाँ, देख देख देख।
2: हाँ, पहला इनाम जो निकला है ना। हाँ? वो है के सीरीज का।
0: ओ महाराज, ये तो अपनी सीरीज है। और नंबर वो
2: के।
0: अरे कितनी बार के बोलेगा यार, आगे का नंबर क्यों नहीं बोलता?
1: अरे बोल तो रहा है। हाँ बेटा बोल बोल।
0: अबे बोलता है कि तू अगला पारा खींच के।
1: देखो अम्मा बापू को, अभी तो पैसा आया नहीं, तभी हाल हैगा।
0: अरे तू चुप कर। हाँ बोल रहे नंबर। नहीं नहीं, तू टिकट ला इधर दे दे
2: के।
0: अरे फिर के?
2: के 54
0: के क्या K54? अरे वो मारा यार, आगे आगे 53 है क्या रे चिंटू?
2: हाँ बापू, आगे 53 ही है।
0: और आखिर के
2: 521 है बापू।
0: क्या? हे लक्ष्मी
1: मैया। अरे क्या हो गया इन्हें बापू? ओ बापू
2: जी, तो हो गए बेहोश।
1: क्या
2: अम्मा, लगता है आखिरी के नंबर भी मिल गए होंगे। लॉटरी निकल गई है 10 लाख की। हाँ सच्ची में अम्मा, अम्मारे 10 लाख का पहला इनाम। अब सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे हमारे। 10 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है बहना।
1: अरे आग लगे तुम्हारी रकम में। जरा अपने बापू को तो देख, हराम क्या हो गया इनको।
2: अम्मा खुशी के मारे बापू बेहोश हो गए होंगे।
1: बेहोश हो गए?
2: हाँ अम्मा, अभी चप्पल सुखाते होंगे, अभी ठीक हो जाएंगे।
0: अबे जे चप्पल गिन गिन के लगाएंगे हम तुम्हें, चप्पल सुखाता है हमें है? हम लखपतिये को?
2: बापू 10 लखपतिये कहो।
0: हाँ 10 लखपतिया हो गया हूँ मैं, अब सारे अरमान पूरे करेंगे हम। बंगला होएगा, फ्रिज होएगा।
2: बापू हम बहुत दिनों से कह रहे हैंगे, पहले हमारी फरमाइश पूरी करने हैं।
0: हाँ हाँ हाँ हा, बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को?
2: मुकर मत जाना बापू।
0: अरे नहीं नहीं रे, तू बोल तो
2: बापू। हमें है ना, हमें

0: है ना, एक मुंह पेट दिलवा देना बस।
1: अरे धत तेरे की
2: मोपेड।
1: हाँ बे, स्कूटर की बात कर, कार की बात कर, तुम बता बच्चों की अम्मा तुम्हें क्या चाहिए।
3: इस सल्लो के लिए कोई अच्छा सा लड़का देकर इसका ब्याह धूमधाम से कर दो जी।
0: बापू हम ऐसा करते हैं, कॉपी पेन लेकर आते हैं।
1: हाँ, जे सही है यार, जे सही है, एक एक आइटम और उसका खर्चा लिखते जाते हैं।
0: हाँ।
1: जा।
4: मुरारीलाल, अबे ओ मुरारीलाल।
1: वर्मा जी, अबे तुम्हें किससे कर रहे हो?
4: तुम्हें कह रहे हैं, तुम्हें मांगते कहीं के।
1: मांगते कहीं के हैं? क्या मतलब? तुमसे कौन सी चीज मांगी भाई हमने?
4: अखबार लेकर नहीं आया हमारा? लाओ तो हमारा अखबार।
1: खबरदार, जो अखबार को हाथ लगाया तो।
4: अरे वाह, हमारा अखबार और हम ही हाथ नहीं लगा सकते?
1: अरे काय का तुम्हारा अखबार। अरे बेटा सल्लो।
3: हाँ।
1: कहाँ से लाई तुम ये अखबार बताओ तो?
3: शर्मा अंकल के यहाँ से लाए थे। हाँ।
1: लो सुन लिया।
4: पर शर्मा जी हमारा अखबार ही तो ले गए थे।
1: तो ये तुम शर्मा से बात करो जाकर। शर्मा जी लेकर गए हैं तो शर्मा जी से ही जाकर लो अपना अखबार। दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ चले आए।
4: अबे ए मुरारी, मुंह संभाल कर बात करना।
1: अरे क्या मुंह संभाल कर बात करना, लखपति हो गए हम।
4: लखपति?
1: हाँ
4: लखपति हो गए मतलब?
1: अरे 10 लाख की लॉटरी निकली हमारी, समझे, 10 लाख की।
4: अबे तो चाहे जैसी बात करेगा क्या है, एक उल्टा हाथ मारूंगा तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा तेरा।
1: क्या क्या क्या क्या क्या, क्या कहा? थोबड़ा तो मैं तेरा सही करता हूँ अभी के। ये ले।
3: अजी अजी क्या हो गया, क्यों बिस्तर को पीट रहे हो नींद में?
0: बापू बापू, ये तकिए लेकर किससे मारामारी कर रहे हो?
5: कोई सपना देख रहे थे क्या बापू?
1: अरे सपना? अरे मेरे 10 लाख कहाँ गए? वो वर्मा का बच्चा कहाँ गया?
3: पर वर्मा जी आए कहाँ? हाँ उनके यहाँ से अखबार जरूर लाया है चिंटू।
1: अरे तो लॉटरी का इनाम निकला?
3: हाँ निकला है, 10 रुपए का इनाम निकला है।
1: क्या 10 रुपए? हाय मेरे 10 लाख।

0: लॉटरी खुल गई। अभी आप अशोक बुलानी की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे बालेंद्र सिंह कुशवाह, शिवांगी पवार, राजीव सिंह, कंचन राजानी और राकेश जैमिनी। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। पेश है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वीर ज़ारा फिल्म के गीत से। आवाज़ लता मंगेशकर और सोनू निगम की है, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत निर्देशन मदन मोहन और संजीव कोहली का।

वीर जारा, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ में। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत मदन मोहन और संजीव कोहली का था। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है फिल्म संगीत दिल से। इस फिल्म का गीत आप सुनिए उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ में। शब्द रचना गुलजार की है और संगीत ए आर रहमान का।

उदित नारायण और महालक्ष्मी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दिल से फिल्म का गीत। शब्द रचना गुलजार की थी और संगीत AR रहमान का। DTH के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म बॉर्डर का गीत सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ में, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत अनु मलिक का।

0: सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए फिल्म बॉर्डर केस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। संग्रहालय से के अंतर्गत आप सुनिए धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी।
1: वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की चौथी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि मुश्ताक सायरे को अपने घर वापस ले जाने के लिए आता है, लेकिन फाता सायरे को वापस नहीं भेजती है और उसे ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है। मुश्ताक खाली हाथ वापस लौट जाता है। अब आगे।

0: अम्मी
1: मुश्ताक आ गया बेटा।
0: हाँ अम्मी।
1: अरे अकेला आया है, सारे नहीं आई?
0: नहीं अम्मी, सारे नहीं आई।
1: क्यों भला, तू गया था ना?
0: हाँ गया तो था, पर वो नहीं आई अम्मी। कह रही थी कि कुछ दिन और रहेगी अपनी अम्मी के घर।
1: बहुत दिन बाद गई थी, सो मन कर गया होगा रहने को। अच्छा चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ।
0: नहीं अम्मी अभी रहने दो, मन करेगा तो खा लूंगा।
1: अच्छा हसन बट भाई और फाता कैसी हैं, और उनकी तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ अम्मी सब ठीक है, सलाम भेजा है आप लोगों को।
1: अल्लाह सबको सलामत रखे।
0: अम्मी मैं कमरे में जा रहा हूँ।
1: खाना नहीं खाएगा क्या?
0: नहीं अभी नहीं, थोड़ी थकावट लग रही है।
1: ठीक है, जब तेरे अब्बा आ जाएंगे तो खा लेना।
0: अम्मी अब्बा गए कहाँ हैं?
1: कह कर तो नहीं गए, कहीं बैठ गए होंगे गप्पे मारने। इस उम्र में बचा ही क्या है करने को।
0: अच्छा अम्मी अब्बा आ जाए तो बता देना, तब तक मैं आराम कर लूं।
1: ठीक है।

0: कौन?
1: अरे मैं हूँ।
0: आ गए?
1: हाँ, वो जानवरों के चारे के लिए गया था। असलम को कह दिया है, वो कल पहुंचा देगा।
0: चलो, अच्छा किया।
1: सुनो, ये मुश्ताक सारे को लेने गया था, आया नहीं अभी तक क्या?
0: थोड़ी देर पहले ही आया है।
1: है कहाँ?
0: अपने कमरे में है।
1: सारे?
0: सारे नहीं आई।
1: क्या? सारे नहीं आई है? मुश्ताक तो लेने गया था ना?
0: गया तो था, पर सारे नहीं आई।
1: वहाँ सब सलामत तो है ना?
0: मुश्ताक तो कह रहा था कि सब सलामत है।
1: तो फिर सारे क्यों नहीं आई?
0: कुछ दिन और रह

0: रहना चाहती है अम्मी के पास।
1: कुछ और बात तो नहीं हुई ना वहाँ?
0: और कुछ तो बताया ही नहीं मुश्ताक ने, जो बताया था वो मैंने आपसे कह दिया।
1: ओ, तो ठीक है, अरे कुछ दिन रहकर ही सारे को बुला लिया जाएगा।
0: मुश्ताक को बुला लेती हूँ, उसने खाना भी नहीं खाया।
1: ठीक है, बुला लो, आज साथ ही खाना खा लेंगे।

0: मुश्ताक नहीं आया?
1: नहीं, मुश्ताक की तबीयत ठीक नहीं।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: हुआ तो कुछ नहीं, पर परेशान लग रहा है।
0: अरे पूछा नहीं, क्यों परेशान है वो?
1: पूछा तो था, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया।
0: ये क्या बात हुई बोला?
1: अजी, जवान बेटे पर कोई बात बताने को जोर भी तो नहीं डाल सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे के ना आने से मुश्ताक थोड़ा परेशान है, इसीलिए ऐसा कर रहा है।
0: ठीक है, ये हो सकता है, हो सकता है।
1: हाँ, अभी अभी तो निकाह हुआ है, सो सारे की याद तो आएगी ही।
0: फजी, मुश्ताक का खाना उसके कमरे में ही भेज दो और मेरी थाली में निकाल दो। ठीक है, बाकी बातें खाते हुए करेंगे।
1: हाँ, मुंह हाथ धो कर आओ, मैं खाना निकालती हूँ।
0: ठीक है, अरे रे जाओ, पहले मुश्ताक को खाना दे आओ।
1: तुम बैठो तो, मैं अभी देकर आती हूँ।

0: अरे भाई, इस उम्र के बच्चों को संभालना, समझना बहुत मुश्किल काम है।
1: क्या कहते हो जी?
0: अरे सच कह रहा हूँ फजी, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है।
1: कहते तो तुम ठीक हो जी, पर इस बुढ़ापे में हम कर भी क्या सकते हैं?
0: नहीं, कुछ भी नहीं, बस देखते रह सकते हैं।

0: वजीर, बच्चे अब अपने फैसले खुद लेने लगे हैं और उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल है।
1: क्या कर सकते हैं हम, मुश्ताक को ही लो, सारे नहीं।

0: अल्लाह ताला पर ही तो भरोसा है जिससे मन को तसल्ली होती है, नहीं तो इन बच्चों के बर्ताव से तो।
1: और रोटी दूं?
0: नहीं नहीं, रहने दो।
1: अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, एक रोटी और ले लो।
0: नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, बस बहुत हो गया।
1: एक तो पहले से ही कम खाया और रोटी भी था।

0: अभी बना देती हूँ।
1: नहीं, अगर परेशानी हो तो रहने देना।
0: अजी, परेशानी किस बात की, अभी बना देती हूँ।
1: सुनो, वो कुछ लकड़ियां देती जाना, अलाव में आग जला दूं। अब ये ठंड कुछ बढ़ गई लगती है।

0: क्या कर रही हो फजी?
1: अरे मेहर, आओ आओ, बर्तन मांज रही हूँ।
0: क्यों, बहू कहाँ गई?
1: मायके गई हुई है, उसकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी सो मिलने गई थी।
0: तो क्या अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है?
1: तबीयत तो ठीक हो गई है, पर सारे कुछ दिन मायके में रहना चाह रही थी सो अभी आई नहीं है।
0: एक बात कहूँ फजी, बुरा तो ना मानोगी?
1: ऐसी भी क्या बात है बीबी कि बुरा मानू, पहले बात तो कहो।
0: अपने पर ना लेना फजी, ये पहले कह देती हूँ। हाँ
1: बीबी, तुम बात तो कहो, यूं पहेलियां क्यों बुझा रही हो?
0: फजी, आजकल की लड़कियों का क्या कहूँ, दिमाग खराब हो गया है।
1: अरे बात क्या हुई?
0: बात क्या होनी थी, तुम नहीं पहचानती, मेरी दूर की रिश्तेदार थी, उसने तो हद ही कर दी।
1: मेहर बताओ तो हुआ क्या?
0: वो अपने शौहर को छोड़ दूसरे लड़के के साथ चली गई।
1: अरे रे, ये तो बुरा हुआ बीबी, पता नहीं आज के बच्चों को होता क्या जा रहा है।
0: फजी मेरी मान, तू बहू को बुला ले, ज्यादा दिन लड़की मायके में रहे तो लड़की का सर घूम जाता है, और अपने लड़के को भी थोड़ा समझा कि बीवी पर लगाम रखे, बुरा ना मानना। सुना तो मैंने यही है कि अपनी अम्मी की बीमारी का बहाना बनाकर मायके में रह रही है।
1: मेहर बीबी, तुम्हारा कहना सही हो सकता है पर सब के लिए नहीं। मेरा बेटा और मेरी बहू ऐसे नहीं है कि उन पर दबाव बनाने के लिए मुझे कुछ करना पड़े।
0: अरे फजी, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो यूं ही कह रही थी, तूने तो बात अपने पर ले ली।
1: बीबी बुरा नहीं मानती पर
0: परवर छोड़ फजी, मैंने दुनिया देखी है और उसी तजुर्बे से कहती हूँ, तेरी बहू ठीक है, तेरा कहा मानती है, पर सबका नसीब तेरे जैसा तो होता नहीं कि बहू की सेवा पाए।
1: मेहर बीबी, बहू

0: पर दबाव बनाने से बहु सेवा करेगी ही, अब ये बात तो कोई तय नहीं है ना।
1: फजी, तू मेरी बात समझ नहीं रही है कि मैं कह क्या रही हूँ। लोग कहते हैं कि मुश्ताक को घुमाकर बहु मायके में मजे कर रही है।
0: किसने कहा तुमसे? ये सब झूठ है।
1: अरे, ये तो मैं भी जानती हूँ कि झूठ है, पर कहने वालों के जुबान थोड़े ही बंद की जा सकती है। उनके मन में जो आए सो कहते हैं, पर उनकी बातों पर तू ध्यान न देना।
0: मेहर बीबी, मैं जानती हूँ कि मेरी बहू अच्छी है और मुश्ताक को भी प्यार करती है। जमाने को क्या, किसी का भला तो देखा जाता नहीं, बकने लगते हैं।
1: छोड़ो भी उनकी बातों को। सुना है कि मुश्ताक बहू को लेने गया था, ये बात तो सच है ना?
0: हाँ, गया तो था मुश्ताक,
1: फिर भी बहू नहीं आई, यही ना?
0: अरे, अम्मी की बीमारी में गई थी, कुछ दिन रहना चाहती थी सो नहीं आई, और क्या।
1: लोग ये तो नहीं जानते, बस कह देते हैं कि।
0: क्या कहते हैं?
1: यही कि मुश्ताक का अपनी बीवी पर कोई जोर नहीं चलता, बीवी जो कहती है मुश्ताक वही करता है, गुलाम हो गया है।
0: देखो बीबी, जिनके पास कोई काम नहीं होता ना, उन्हें ही ये फालतू बातें सूझती हैं। और एक बात कह देती हूँ, हाँ, बुरा ना मानना, तुम जहाँ भी ये फालतू बातें सुनती हो ना, अल्लाह कसम, अपने तक ही रखा करो बीबी। मुझे इन फालतू बातों से कोई लेना देना नहीं, मैं अपने बेटे मुश्ताक को जानती हूँ और अपनी बहू सारे को भी जानती हूँ।
1: नाराज ना हो फजी, लोग तो यूं ही बकते हैं, मैंने तो जो सुना था वही कह दी, बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना।
0: तुम भला क्यों माफी मांग रही हो मेहर बीबी? वक्त आएगा तो वे लोग देखेंगे कि घर क्या होता है और घर को चलाया कैसे जाता है।
1: अच्छा फजी, मैं तो अब चलूंगी, बड़ी देर हो गई।
0: थोड़ी देर बैठो, चाय तो पीती जाओ।
1: फिर कभी पी लूंगी, अभी तो चलती हूँ। और हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानना, तुम्हें अपना समझती हूँ इसीलिए कह देती हूँ।
0: कोई बात नहीं, अपनों की बातों का भी कोई बुरा मानता है क्या?
1: अच्छा, अब चलती हूँ। खुदा हाफिज।
0: हाफिज खुदा।

0: Fuzzy? Fuzzy? Fuzzy? क्यों क्या हुआ फजी? यूं गुमसुम से क्यों बैठी हो?
1: नहीं कुछ नहीं, यूं ही बैठी हूँ।
0: यूं ही बैठी हो तो गुमसुम सी क्यों? कोई बात हुई क्या? भाई तुम्हें इस तरह से उदास बैठे पहले तो नहीं देखा।
1: छोड़ो भी बातें बनाना।
0: अरे अरे तुम तो नाराज हो गई। बोलो बोलो क्या बात है?
1: नहीं कुछ भी तो नहीं।
0: फजी तुम परेशान हो और तुम्हारी परेशानी साफ साफ पता चल रही है। ठीक है अब तुम बताना ना चाहो तो भाई तुम्हारी मर्जी।
1: सारे को बुलवा लेते।
0: सारे को बुलवा लूं

0: क्यों क्यों बोला? अरे वो मायके की तो है, कहीं और तो नहीं?
1: सारे है तो मायके में, पर लोगों को क्या कहें।
0: अरे इसमें लोगों को कहने वाली क्या बात हो गई?
1: आसपास के लोग क्या क्या बातें करते हैं तुम्हें क्या पता।
0: लोगों का क्या है? वैसे हुआ क्या जो तुम इतनी जिद कर रही हो कि सारे को बुला लूं?
1: आज मेहर बीबी आई थी, उन्होंने ही बताया कि लोग सारे और मुश्ताक को लेकर क्या क्या कहते हैं।
0: अरे तुम भी किसकी बात लेकर बैठ गई? अरे वो मेहर बीवी को तो बस जो मन में आया बक दिया, ना आगे सोचा ना पीछे, यूं ही मनगढ़ंत बोलती रहती है।
1: पर सारे को मायके गए भी तो कितना समय हो गया।
0: अरे भाई सारे अपनी अम्मी के घर ही तो है, कहीं और तो नहीं?
1: देखो जी, निकाह के बाद मायके में इतने दिन रहना अच्छा नहीं होता। अब मुश्ताक को बोल दो कि सारे को ले आए।
0: ठीक है, मुश्ताक को तुम ही बोल दो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
1: ठीक है, मुश्ताक घर आता है तो कहूंगी कि कल ही सारे को लेने चला जाए।
0: ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। और हाँ देखो देखो, ये एक बात मैं कह देता हूँ, तुम मेहर बीवी जैसी औरतों की बातें मत सुना करो।
1: अरे मैं कोई सुनने थोड़े ही गई थी, वो तो खुद आई थी यहाँ।
0: देखो फजी, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो।
1: कैसे ना दूं, आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के बीच में है।
0: तो ठीक है, हसन भट्ट को पैगाम भेजता हूँ कि वो सारे को भेज दे।
1: हाँ, मुश्ताक को भी कहती हूँ कि सारे को लेने के लिए चला जाए।

अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां की चौथी कड़ी। गीतकार अशोक वर्मा, संगीत दिया था मोहनलाल ने, गायिका सुप्रिया श्रीवास्तव, ध्वनि मुद्रण और संपादन जितेंद्र, लेखक अक्रम खान, निर्माता निर्देशक अंशु आनंद। भाग लेने वाले कलाकार थे नीलम, लोकेश, सतीश कक्कड़ और कोयना। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक सिसकियां का चौथा भाग, डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी भोपाल है। हमारा अगला प्रसारण कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 और G13 सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है। इस दौरान अमित शाह ने घोषणा की कि BSF की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदला जा रहा है। प्रदेश के अनूपपुर जिले में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया है। यह दुर्घटना पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के बिजोरा गांव में हुई, जहां करीब 6 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य और शिशु कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 जारी कर दिया गया है। इसमें भारत में मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण और वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के आंकड़े सामने आए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति NSC ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल नेपाल स्टील इंडिया कंपनी की निवेश योजना SIP को मंजूरी दे दी है। और सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारत की मिक्स डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो आज सेमीफाइनल में जापान की सायका होबारा और यऊची शिमोगामी से पराजित हो गए।

दोस्तों, लाइफ में इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में सुख दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है। सुख का तो ठीक है, लेकिन दुख में आत्मनिर्भरता ही आपके काम आती है। और आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों से नहीं आती, ये आती है आपके टैलेंट से, आपके अपने कौशल से। आपका ये टैलेंट ही आपको हमेशा सही राह पर लेकर जाता है। कैसे, जानते हैं आज के युववाणी में। आकाशवाणी के रीवा केंद्र से मैं आपकी रेडियो दोस्त मनाली शुक्ला स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। स्वीकारिए मेरा प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार। दोस्तों, अभी मैंने आपसे आत्मनिर्भरता की बात की, ये क्या है और कैसे काम आती है, जानते हैं राहुल और प्रिया की बातों के जरिए। राहुल ने कहा, आजकल हर तरफ आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, लेकिन सच बताऊं, आत्मनिर्भर बनना इतना आसान नहीं है। पहले तो हमें कुछ अच्छा कौशल सीखना पड़ेगा ना। प्रिया ने कहा, बिल्कुल सही कहा। कौशल विकास मतलब बस डिग्री ले लेना नहीं है, मतलब वो हुनर सीखना जो काम आए, जिससे आप पैसे कमा सकें और दूसरों पर निर्भर ना रहें। जैसे आजकल लड़के लड़कियां सिलाई, ब्यूटी पार्लर, कंप्यूटर कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं। राहुल ने कहा, हाँ, मेरे बगल वाले भैया ने तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया था। पहले वो मजदूरी करते थे, अब खुद का छोटा सा काम शुरू कर दिया है। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ खुद ही संभाल रहे हैं अब वो। ये है असली आत्मनिर्भरता। प्रिया ने कहा कि हाँ, सरकार भी बहुत सारी स्कीम्स चला रही है, पीएम कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ITI, पॉलिटेक्निक, मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया। लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग सिर्फ नाम सुनकर रह जाते हैं, असल में जाना, ट्रेनिंग लेना और फिर लगना भी तो पड़ता है। राहुल ने कहा, कौशल सीखने के बहुत से फायदे हैं। नौकरी की तलाश में भटकना बंद हो जाता है, खुद का छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अच्छी कमाई होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और देश भी मजबूत होता है। प्रिया ने कहा, बिल्कुल, एक गांव की लड़की अगर अच्छे से हैंडीक्राफ्ट, टेलरिंग या ऑनलाइन काम सीख ले तो वो न सिर्फ खुद कमा पाएगी बल्कि दूसरी लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे सकती है। एक परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, फिर पूरा गांव। राहुल ने कहा, लेकिन चुनौतियां भी तो हैं। सही ट्रेनिंग सेंटर नहीं मिलता, लोग बीच में छोड़ देते हैं, लोगों का ये सोचना कि ये काम तो छोटा काम है, और शुरुआत में पैसे भी कम मिलते हैं। प्रिया ने कहा, चुनौतियां तो हैं, लेकिन रुकना नहीं है। आज के समय में सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्स, फ्री एप्स के जरिए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस लगन चाहिए। राहुल ने कहा, वाकई में कौशल विकास आत्मनिर्भरता की सीढ़ी है। जितना ज्यादा हुनर सीखोगे उतना कम दूसरों पर निर्भर रहोगे। चाहे नौकरी करो, अपना काम शुरू करो, आत्मनिर्भर इंसान कभी हार नहीं मानता। प्रिया ने कहा, और सबसे बड़ी बात ये कि आत्मनिर्भर व्यक्ति न सिर्फ खुद खुश रहता है बल्कि परिवार, समाज और देश को भी मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, राहुल और प्रिया की बातों के जरिए ये तो समझ में आता है कि किताबी ज्ञान अच्छा है, लेकिन हाथ का हुनर जीवन बदल देता है। तो आज से ही तय कर लीजिए कि आप एक नया कौशल सीखना शुरू कर देंगे। छोटा कदम हो सकता है, लेकिन ये कदम हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में ले जाएगा। कौशल सीखिए, आत्मनिर्भर बनिए और देश को मजबूत बनाइए। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं KK की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

0: दोस्तों, आज के समय में हमारा युवा समाज नशे की लत का ज्यादा शिकार है। आज युवाओं के नशे का मुख्य कारण है उनमें सहन शक्ति की कमी। देश का युवा वर्ग आज नशे की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। युवा आजकल बहुत जल्दी अपना हौसला खो देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और फिर नशे की गिरफ्त में फंस जाते हैं। अपने जीवन में कई बार लोग लगातार मिल रही असफलताओं से घबरा जाते हैं और इस कारण वो भविष्य में मिलने वाली सफलताओं की संभावना को भी खो देते हैं, फिर किस्मत और समय को दोष देते हैं। नशे को किस तरह से छोड़ा जा सकता है, नशे की लत से किस तरह से बाहर आया जा सकता है, जानते हैं आस्था तोमर से।
1: दोस्तों, देश की युवा पीढ़ी अगर गलत रास्ते पर चले तो इसमें नुकसान केवल उन युवा पीढ़ी का ही नहीं होता, बल्कि इसमें देश का भी नुकसान होता है। युवा पीढ़ी के गलत राह पर चले जाने से देश की तरक्की रुक जाती है, क्योंकि इन्हीं से तो देश की तरक्की है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी नशे की राह पर जा रही है। दोस्तों, एक व्यक्ति जब नशा करना शुरू कर देता है तो उसका घर, परिवार, सबके जीवन में अंधेरा छा जाता है। दुख तो इस बात का है कि यह सब जानने के बावजूद भी युवा पीढ़ी नशे का सेवन करना नहीं छोड़ रही। सारे देशों में भारत सबसे अत्यधिक युवा पीढ़ी वाला देश है। युवा पीढ़ी पर ही देश की तरक्की निर्भर करती है। लेकिन जब युवा पीढ़ी गलत राह पर चली जाए तो फिर देश की तरक्की कैसे हो सकती है? आज नशा इस कदर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है जैसे एक दीमक लकड़ी को बर्बाद कर देती है। नशा नाश के समान होता है और आज भारत की युवा पीढ़ी बहुत तेजी से नशाखोरी की प्रवृत्ति अपना रही है। आजकल लड़कियां भी नशा करने लगी हैं। आजकल के युवाओं में नशा करने के बहुत सारे कारण मौजूद हैं, जैसे कि नशे को फैशन समझना, तनाव को कम करने का माध्यम बनाना, गलत संगत में फंसना, संस्कारों की कमी और नशीले पदार्थों का अत्यधिक प्रचार और प्रसार। यदि आज के युवा वर्ग को नशीले पदार्थों के सेवन से बचाना है, उन्हें नशे की राह पर जाने से रोकना है, तो नशीले पदार्थों की बिक्री पर कठोरता से रोक लगानी पड़ेगी। जब नशीले पदार्थ की बिक्री नहीं होगी तो लोग उसका सेवन ही नहीं करेंगे। आज सरकार और बहुत सारे ऐसे संस्थान जो युवा पीढ़ी को नशा मुक्त करवाने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ युवा पीढ़ी को भी यह समझने की जरूरत है कि वे पढ़े लिखे हैं, अच्छे बुरे की पहचान भली भांति कर सकते हैं। इसलिए नशीले पदार्थों को अपनी लत ना बनाएं। यह समझने का समय आ गया है कि स्कूल और कॉलेजों में पागलपन भरी प्रतिस्पर्धा युवाओं के भविष्य को सुधारने के बजाय बर्बाद कर रही है। प्रतिस्पर्धा का उच्च स्तर छात्रों को तनाव में डाल रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। माता पिता का ध्यान अपने बच्चों को कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते देखने पर ही नहीं होना चाहिए। इसके बजाय वह एक स्वस्थ और बुद्धिमान बच्चे की परवरिश करें जो सही और गलत के बीच का अंतर करने में सक्षम हो। माता पिता को अपने बच्चों का मार्गदर्शन करना चाहिए और हर कदम पर उनके साथ रहना चाहिए। उन्हें अपने कौशल को निखारना

0: चाहिए, लेकिन साथ ही उनकी क्षमता को भी समझना चाहिए। उन्हें पढ़ाई और ऐसी अन्य अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना चाहिए। माता पिता को यह समझने की जरूरत है कि अपने बच्चों को डांटना और उन्हें लत छोड़ने के लिए मजबूर करना मदद नहीं करता है। किसी भी तरह की लत से छुटकारा पाना एक क्रमिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान माता पिता को अपने बच्चों के साथ खड़े रहना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को नशे की लत से उबरने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता देनी चाहिए। इसी के साथ अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। धन्यवाद
1: दोस्तों। अभी आप आस्था तोमर को सुन पा रहे थे। दोस्तों, माता पिता हमारे साथ हर जगह नहीं होते, इसलिए वो हमें संस्कार देते हैं और उनके ये संस्कार ही हमें जीवन में हर गलत राह पर जाने से रोकते हैं, हमें सही काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं। नशा छोड़ने के लिए जरूरी है कि युवा अपने आप को मजबूत बनाए और गलत संगति से बचें। कोई भी परेशानी अपने माता पिता के साथ या अपने संग साथियों या कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमें समझ सके और जो सही और गलत में फर्क बता सके, उनसे शेयर जरूर करें। जब भारत का युवा वर्ग नशे की लत से दूर रहेगा, तब तो वो अपने करियर के बारे में सोच पाएगा। और आज के समय में करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते हैं, तो उन रास्तों की तरफ देखिए और नशे से दूर रहिए। और दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं राहत फतेह अली खान की खूबसूरत आवाज में ये गीत।

और अब बढ़ते हैं हमारे आज के विशेष स्तंभ हमारी धरोहर की ओर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे पिथौरा भित्ति चित्र कला के विषय में। पिथौरा भित्ति चित्र कला क्या है? दोस्तों, पिथौरा भित्ति चित्र कला गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों की बहुत खूबसूरत और जीवंत कला है। ये मुख्य रूप से राठवा और भील समुदाय के लोग ही बनाते हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि पूजा पाठ और अपनी इच्छाओं को ईश्वर तक पहुंचाने का एक पारंपरिक तरीका है। पिथौरा चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं, आमतौर पर घर की मुख्य दीवार या पूजा वाले कमरे की दीवार पर ही बनाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले सफेद, लाल, नीला, पीला, हरा और काला रंग इस्तेमाल होता है, जो कि प्राकृतिक चीजों से ही बनाए जाते हैं, जैसे चावल का आटा, हल्दी, फूल, पत्तियां, ये सभी। और आजकल बाजार के रंग भी इसमें उपयोग किए जाते हैं। लेकिन ये बनाया कैसे जाता है, ये जानते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले दीवार को गोबर और मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। फिर कलाकार, जिसे कि लखेरा कहते हैं, वो बांस की पतली छड़ी या ब्रश से बिना किसी नक्शे के सीधे चित्र बनाते हैं। चित्रों में घोड़े, बैल, हाथी, मोर, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे, देवी देवता और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाए जाते हैं। बीच में एक बड़ा चौकोर या आयताकार बॉर्डर बना दिया जाता है, जिसमें मुख्य कहानी छुपी हुई होती है। चारों तरफ सुंदर बॉर्डर और छोटे छोटे प्रतीक चिन्ह बनाए जाते हैं। दोस्तों, पिथौरा मुख्य रूप से शुभ अवसरों पर बनाया जाता है, जैसे शादी, किसी बच्चे का जन्म, घर बनना या कोई मनोकामना पूरी होने पर। लोग मानते हैं कि पिथौरा बनाने से घर में सुख समृद्धि आती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। ये आदिवासी संस्कृति का आईना है, जिसमें प्रकृति, पशु पक्षी और देवता सभी एक साथ रहते हैं। आजकल ये कला सिर्फ दीवारों तक सीमित नहीं रही, कलाकार इसे कैनवास, कपड़े और कागज पर भी बना रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं इसे बढ़ावा दे रही हैं, ताकि नई पीढ़ी इसे सीखे और कलाकारों की आय बढ़े। दोस्तों, पिथौरा कला हमें सिखाती है कि सादगी में भी कितनी सुंदरता छिपी हो सकती है। ये हमारी जड़ों, प्रकृति और आस्था का सुंदर मेल है। तो अगर आप कभी राठवा गांव जाएं, तो इन जीवंत दीवारों को देखना कभी मत भूलिएगा। ये चित्र सिर्फ दीवार नहीं सजाते, बल्कि हमारे दिल को भी छू जाते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे यूं ही टेंशन लेकर के जाया ना करें, क्योंकि आपको हर रोज आपका मूड डिस्टर्ब करने के हजारों बहाने मिलेंगे। लेकिन हर वक्त खुद को पॉजिटिव रखें। जब भी आप अच्छा फील ना कर रहे हो, तो अपने मूड को बदलने के लिए सॉन्ग सुने। इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं ये गीत सुजैन की आवाज में।

आपने कई बार सुना होगा कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसे खुलकर जीना चाहिए। जिसने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। इसी के साथ आपको सुनवाते हैं विशाल दादलानी की आवाज में ये गीत।